0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरे साथ जिंदगी में मिस एडवेंचर्स होते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम है कि ये नहीं होने चाहिए, दैट आई एम टोटली क्रशिंग ऑन डूड. लाइक रिसेंटली, अभी 2-3 हफ्ते पहले, फाइनली हमारी बिल्डिंग में एक बहुत ही लाइक क्यूट सी काइंड गाय आया, एंड ही वाज अ टोटल सेपियोसेक्सुअल्स ड्रीम, चश्मा वश्मा, फ्रेंच बियर्ड एंड एवरीथिंग, जस्ट द काइंड गाय दैट रॉक्स माय बोट. अब इस बंदे के सामने मैं भी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी. हम दोनों फॉर्चुनेटली उस मोमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर थे, एंड बोथ ऑफ अस हैड टू गेट इनटू द सेम लिफ्ट. लेकिन मैं तो मैं हूँ, मैं हीरोइन बन रही थी, मैंने अपने डार्क ग्लासेस अपने चेहरे से उतारे ही नहीं, और जब मैं स्वॉव बन के लिफ्ट में घुस रही थी, आई डिडंट रियलाइज दैट आई टुक सो लॉन्ग गेटिंग इनटू द लिफ्ट इन स्लो मोशन कि वो लिफ्ट मेरे मुंह पर बंद हो गई. And that guy just looked at me, made eye contact, bro, and he smiled. और उसने उस लिफ्ट को मेरे मुंह पर बंद होने दिया. And I was like, यार, this is so terrible. इसीलिए सिंगल हूँ मैं. और अगर आपने भी मेरी जिंदगी में ऐसे कार्यक्रमों के अलावा कोई और क्रम नहीं किया है, why don't you hit me up? मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. You can find me on the gram, on Facebook, and most likely on a singles club as well. On that note, while you send me your number, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot. It's the

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Listener MI, back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया बिकॉज सीक्रेटली यू हैड द हॉट्स फॉर आपकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन. ऐसी वाहियात स्टोरीज लेकर आप जाने कहाँ वाले हो? जजमेंटल कान यहाँ है और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर बेब.
2: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू मेरी जान?
2: आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
1: वैसे कोई गुड वुड तो नहीं है. यू आर बेटर देन गुड है ना? और मे बी नॉट बेटर देन गुड, वर्स देन गुड. हमारी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी इंस्टाग्राम पर, आपने मुझे अपनी कन्फेशन बताई एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज सो क्रेजी, आई टोटली वांट टू हियर इट.
2: सो व्हाट हैपेंड इज आई मेट दिस गाय ऑनलाइन. तो ही लाइक अ वेरी जिम फ्रीक और ऐसे बॉडी बॉडी वाला, लाइक ही इज एन एथलीट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ऐसे एक्सरसाइज बहुत पसंद है. तो मतलब ही आस्क्ड मी डू यू, तो अब आई नो बिकॉज ही इज अ पर्सन लाइक दैट, तो उसको एक्सपेक्टेड होगा कि उसकी बंदी होगी वो भी ऐसे हो. तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं भी ऐसे रनिंग वनिंग करती हूँ और जाती हूँ. तो इट वेंट ऑल वेल. सो अबाउट एक महीने का चैट करने के बाद वी वेंट टू अ वेरी क्यूट सा कैफे एंड वी हैड फन. एंड उसके बाद ही सेड आई हैव एन आइडिया. तो आई सेड व्हाट? तो बोला कि नेक्स्ट डेट पर ना हम लोग सुबह रनिंग चलेंगे 6 बजे. तो मैं बोला वो इंडिया गेट के पास वाला वो जो होता है ना, वहाँ पे ऐसी ग्रीनरी भी होती है और रनिंग भी होगी और एकदम बढ़िया हो जाएगा 2-3 किलोमीटर. मैं कद 2-3 किलोमीटर उसके लिए बहुत कम. मैं 500 मीटर सोचू ऐसे भागने के लिए तो ही मैं ऐसे सांस से फूलने लग जाऊंगी, किसी बुटिया हो गई हूँ मैं. एंड एक्सपेक्टिंग एंड नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ कॉट अप इन द सिचुएशन कि अब अगर मैं उसके साथ गई तो क्या ही होगा.
1: Oh my God, you poor thing.
2: वो 6 बजे उठना is a task, right, रोशी?
1: तो अब आप
2: है?
1: I agree. अब आप बोलो ऐसे झूठ गंदे गंदे से, पकड़े गए या अभी पकड़े जाओगे? अगर आप उसके साथ भागने जाओगे वो तो 2 किलोमीटर ऐसे चल लेगा और आप 500 मीटर में आपकी जो हालत होगी, ओ माई गॉड.
2: तो यू नो व्हाट, हॉटनेस दे के झूठ बोला जाता है. अब उनकी बॉडी बॉडी ऐसी होती है, इज लाइक पूरा बाइसेप्स बाइसेप्स लाइक.
1: तो बेसिकली आप करने क्या वाले हो अब? लाइक आई मीन यू आर जस्ट स्टक विद हिम, आई गेस आई जस्ट हैव टू रोशिफाई यू.
2: या बट व्हाट आई थिंक इज कि मैं उसको बोलूंगी कैसे मेरा पैर उड़ गया ऐसे थोड़ा सा भाग एंड देन ही विल हैव टू पिक मी अप कैरी मी, वोंट दैट बी टू रोमांटिक?
1: हाँ, लेकिन आप इमेजिन करो कि हफ्ते में वो 4 डेट्स ऐसी कर रहा है आपके साथ जिसमें वो भागना चाहता है, आप 4 डेट्स पे तो आपका एंकल नहीं ट्विस्ट हो सकता ना. रोमांस असाइड, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर ले मेरी जान. आपको सीरियसली रोशिफिकेशन की जरूरत है और रीथिंकिंग की जरूरत है. रीथिंकिंग आपको खुद करना पड़ेगा, बट रोशिफाई कर लूं आपको?
2: यस श्योर,
1: आप ले लो मुझसे रोशिफिकेशन.
3: यू've been रोशिफाइड.
1: क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है ना, उसका मुझे आइडिया ही नहीं है कि उसको पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला है कि नहीं, या आप सच में एक फिटनेस फ्रीक बन जाओगे. वैसे आपकी इस कॉन्वर्सेशन और डेट के बीच में कितने दिन है?
2: ये 4 दिन है.
1: मैं बोलने वाली थी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो भागने की, 4 दिनों में तो कुछ ना हो पाए दीदी. यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड दैट लाइक ही रियली लाइक्स यू एंड ही ओवरलुक्स द फैक्ट कि आपने से झूठ बोला था. बट ऑल द बेस्ट मेरी जान, इस मुस्कान की चमकान कभी खत्म ना हो
2: कहीं और.
1: मैं बोलना नहीं चाहती थी. ऑल द बेस्ट टू यू बेब. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है, देन मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

0: साथ जीतू राज।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
4: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आंटी, अगर आपके होने वाले दूल्हे की दादी जैसे लगती है तो भी देयर इज ओनली वन थिंग यू आर सपोज्ड टू से टू योर बॉयफ्रेंड स्लैश फियांसेज मॉम, आंटी आप तो बिल्कुल इसकी बहन लगते हो. इन फैक्ट आई गो सो फार टू से कि आप इसकी छोटी बहन लगते हो. ओएमजी, मेरी तरह ओवर एक्टिंग करके मत कहना, बिकॉज शी विल सून फाइंड आउट दैट यू आर जस्ट लाइंग थ्रू योर टीथ. लेकिन अक्सर अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की या अपने होने वाले पति की मॉम को इम्प्रेस करना चाहते हो, द कूलेस्ट ईजीएस्ट थिंग टू से दैट विल कम्प्लीटली चार्म देम इज, आंटी आपकी उम्र से तो आपकी त्वचा का पता ही, सॉरी आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता. क्या करती हैं आप, किस तरह का लेप लगाती हैं अपने फेस पे, मुझे भी बता दीजिए. एंड इफ इन फैक्ट आपकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि You actually end up sharing face packs. That will be something quite cool. और ये मैं experience से कह रही हूँ, obvious, because my ex, his mom and I, we got along better than my ex and I. That is why आज भी मैं आंटी जी के टच में हूँ लेकिन ex के नहीं. On that note, अगर आपकी आपके boyfriend की मम्मी से काफ़ी अच्छी बनती है, I think you should share notes with the whole bunch of us. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफपी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड बेबी, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक कॉफी टेबल है, कॉफी टेबल के उस तरफ वो हॉटी बैठा है, कॉफी टेबल के इस तरफ आप बैठे हो, आप एक दूसरे से सिर्फ बातें कर रहे हो, बातें करते करते योर आईज मीट और उसके बाद आपकी आंख ना ब्लिंक करती है ना आपकी आंख कहीं और देखती है, बस आप एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे हो एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट टचिंग ईच अदर, पूरा का पूरा कैफे इज लिट अप विद दिस क्रेजी सेक्सुअल केमिस्ट्री। इतनी सारी हॉट हीटेड वाइब्स हैं कि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी यू आर फीलिंग द हीट अंडरनीथ योर शर्ट का कॉलर एंड दैट माई फ्रेंड इज समथिंग जो अपने आप होता है। ये इश्क की वो आग है जिसे ना आप जला सकते हो ना बुझा सकते हो, बिकॉज आइदर यू हैव दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री और यू डोंट। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, आई एम समबडी हु हैज एक्सपीरियंसेस वेरी रिसेंटली एंड उसके बारे में सोच के आई एम स्टिल हॉट अंडर द कॉलर। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, देन आई थिंक वी शुड टोटली कंपेयर नोट्स। और वो करने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू वट यू नीड टू डू डार्लिंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक चीज जरूरी से अपने साथ लेकर जाना और वो है आपके काले चश्मे. रात होगी देन इट डजंट मैटर, लेकिन अगर रात नहीं है काले चश्मे पहनने से आपका चेहरा जो है जितना सेक्सी है उससे ज्यादा सेक्सी लगेगा. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिसर्च कहता है. तो अब इसे ट्राई करके देखो एंड देन सी हाउ ऑसम यू आर लुकिंग, राइट? एंड उसके बाद एक सेल्फी लेना सिर्फ अपने चेहरे की प्लीज, एंड सेंड इट टू मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड फॉर नाउ मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय,
1: हाउ आर यू?
2: I'm fine. How are you?
1: झूठ मत बोलो. I am not fine. मतलब I am fine. You are not fine.
2: Little bit. मतलब वो तो है ही.
1: क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया जिंदगी में?
2: आप ही हो जो मेरे दिल की मतलब बात समझते हो.
1: बताओ ना, how can I help you?
2: I got married in 2018. So she is basically from Mumbai.
1: Okay.
2: शादी हुई तो शुरुआत के कुछ दो तीन महीने she is okay with me and my family also. Basically we are middle class family. So ऐसा कुछ नहीं था एकदम हाई फाई. उन्होंने इवन मेरा बैकग्राउंड भी चेक किया था. फिर शादी हो गई. शादी होने के बाद दो ढाई तीन महीने वो ओके रही. फिर क्या हुआ, वो अपने मायके चले गई, मम्मी पापा के यहाँ पे. वहां से 15-20 दिन रहने के बाद वापस आई वो, तो वो जिसको मैं मिला था वो थी ही नहीं.
1: मतलब
2: वो हुआ ऐसे दो ढाई महीने के बाद उसका वो चेंजिंग बिहेवियर सब उसने अलग से डिमांडिंग कि मैं घर छोड़ दूं, मम्मी पापा को छोड़ दूं, उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊं. वो मुझे मतलब मैं तैयार नहीं था वो चीज के लिए, क्योंकि मम्मी पापा वो सिचुएशन में नहीं है अभी भी. पापा हार्ट पेशेंट है, मम्मी ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट. फिर अलग से डिमांडिंग चालू. फिर उसके मम्मी पापा घर पे आने लगे, फोर्स करने लगे कि तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम वहां पे चलो, वहां पे अच्छी जॉब मिलेगी. अब पता है यार कि नहीं मिल सकती. मुंबई जैसे सिटी में रहना एज मिडिल क्लास फैमिली कैसे कैसे रहते वो सबको पता है. बस उस चीज को लेके घर में झगड़े होने लग गए. फिर क्या हुआ, अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटलाइज किया, खर्चा वर्चा हुआ सब हुआ. वो डॉक्टर को खुद होके बोल रही सामने से, मुझे ये इंजेक्शन दो, मुझे ये टैबलेट दो, ऐसा वैसा ये वो. डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया कि शी इज नॉट एन मतलब उसकी मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ा सा कुछ हमें हिला हुआ लग रहा. तो उसके पुलिस वाले घर पे भेज दिया डायरेक्ट केस डाल के, 498 वाला, डावरी वगैरह.
1: ओह जीसस क्राइस्ट,
2: डावरी. फिर और टू बी वेरी ऑनेस्ट रोशी, मतलब आई स्वेयर टू गॉड, जो मतलब मैं कैसे बताऊ कि मैंने 1 रुपया भी डावरी नहीं लिया.
1: आई डोंट डाउट दैट एट ऑल, बिकॉज यू नो अक्सर इन इंडिया आई हैव seen it, mere khud family mein aise hua hai where people have misused this law to try and frame you. Isme koi kharab baat nahi hai ki ek anti dowry law hai, because India mein dowry is still a thing, theek hai? It's just the byproduct of something that's trying to protect a large number of women in India. Aap to Maharashtra mein ho, big towns mein ho, ye sab wahan par aadmi samajhta hai yaar ki theek hai dowry nahi lena, it's not a good thing, I am going to provide for you. Lekin smaller right. India mein jo rural India hai usme dowry laws nahi hote agar to kitni sari aurte dowry ki wajah se jalai jati hai, domestic abuse ka shikar hoti hai. The law is not a bad law, but uska misuse, I wish there was some way to figure out ki yaar, you know, hamare paas ek secret box ya ek secret ball hoti jisme hum dekh lete ki ise misuse kiya ja raha hai. I completely understand ki aapke liye kitna kathin hai,
2: बट डिमांड भी कितने कर रहे हैं रोशी, मैं तो तैयार.
1: कितना पैसे मांग रही है?
2: 25 लाख 30 लाख.
1: यार ये बंदी वैसे है बहुत खराब, बट मेरा सजेशन है कि अगर आप इस बहुत ही गहरे असमंजस में फंस गए हो, 30 लाख दो और बाहर निकलो. दैट्स ऑल दैट आई कैन से, बट आई एम श्योर यू हैव बेटर लीगल एडवाइस. मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूँ, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ. नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी मोहब्बत का कोई वैल्यू नहीं है आपकी जिंदगी में. काश मेरी मोहब्बत देके आप 30 लाख रुपए ला सकते होते कहीं से.
2: मतलब पता नहीं है, मतलब आई एम फ्लाइंग इन द एयर. वो बलून चल रहे हैं ऐसा, मेरे आजू बाजू में हार्ट शेप वाले हैं वो फूट रहे हैं.
1: आई लव यू सो मच. मतलब मेरा बस चलता था मैं आपसे शादी कर लेती, बट पहले आप अपना डिवोर्स तो निपटा लो. मरना मत, बस खुश रहो, वहीं पर रुक जाओ. इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट, कीप मी अपडेटेड, ठीक है, विद व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ. ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डार्लिंग. आई लव यू वेरी मच. ओके, बाय. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही असमंजस है और आपको किसी ना किसी कारण से ये लगता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन आई कैन हेल्प यू फिगर आउट वेयर योर हार्ट इज एट, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट
3: विद मिर्ची. फ्रेश माल,
4: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया.

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो पुकारते हैं, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो, पिया ले लो।

मैं एक ऐसे बंदे के साथ डेट पर जाऊंगी जिसका एक क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है. मतलब मेरे दोस्त कितने अच्छे इंसान है. मैं अपनी दोस्त से बात करी थी एंड आई वाज लाइक यार तेरी जिंदगी में ना एडवेंचर नहीं है, तो मैं तुझसे इंस्पायर नहीं हूँ अपने शो में कुछ भी बात करने के लिए, बिकॉज तेरी जिंदगी इतनी लाइक प्लेन वनिला बोरिंग है. तो मुझे ऐसे स्ट्रेट फेस मेरी आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ, कहती है कल मैं जा रही हूँ एक क्रिमिनल के साथ डेट पर जस्ट टू इंस्पायर यू. आई एम लाइक यार तेरे पास कोई मिडिल पाथ नहीं है कि मतलब या तो पूरा ही जिंदगी में कुछ नहीं करना है या फिर ऐसे करना है कि हो सकता है कि चक्की में मैं भी जेल में चक्की पीसिंग कर रही हूँ. देखो अगर आपने जिंदगी में कभी किसी से ऐसे प्यार किया जेन्युइनली ऑन अ वेरी सीरियस नोट हु हैज हैड अ वेरी स्ट्रेंज पास्ट, ओके मे बी दैट पर्सन हैज बीन टू जेल फॉर सम रीजन और दैट पर्सन हैज बीन एन एडिक्ट यू नो एन अल्कोहल एडिक्ट और समवन हुज डन सब्सटेंस अब्यूज, हाउ हैज दैट रिलेशनशिप वर्क आउट फॉर यू, स्पेशली अगर आप उस स्पेक्ट्रम में नहीं हो. बिकॉज आई हैव डेटेड समवन हु हैड अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज और इनिशियली वो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाती थी. आई नेवर बीन ऑन दैट साइड ऑफ लाइफ. और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट. मे बी वील बी एबल टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप बेटर एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू एंड नेवर बी अशेम्ड of the people that you love. On that note, kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एज अ गर्ल अपसेट हैं और शिकार हैं उस बंदे के जो आपकी जिंदगी में है प्रिटेंडिंग टू बी योर बॉयफ्रेंड, जिसे सब पता है अबाउट कार्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्टॉक्स, लेकिन उसे सिर्फ ये नहीं पता व्हाई यू आर अपसेट एंड नाउ यू एक्चुअली फील लाइक डंपिंग हिम, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू दैट सिस्टर. लेकिन बिफोर यू एक्चुअली डू दैट, लेट्स कंपेयर नोट्स, बिकॉज ऐसे एपिक बंदों को डेट करके अपने ब्रेन सेल्स को खराब करते हुए मैंने इसे एक ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया है. एंड व्हाट बेटर प्रोफेशनल टू डिस्कस दिस विद देन आई. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपका बॉयफ्रेंड इतना ऑब्ट्यूज है दैट यू फील लाइक उसके पास आधा फंक्शनल ब्रेन सेल भी नहीं है, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट. एंड ऑन दैट नोट, व्हाइल यू हिट मी अप ऑन माय सोशल्स, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया बिकॉज सीक्रेटली यू हैड द हॉट्स फॉर आपकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन. ऐसी वाहियात स्टोरीज लेकर आप जाने कहाँ वाले हो?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: जाना कहाँ है, आना यहाँ है बिकॉज नॉन जजमेंटल कान यहाँ है और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर बेब.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू मेरी जान?
3: I'm doing good. How are you?
1: वैसे कोई गुड वुड तो नहीं है. You are better than good, है ना? और मे बी नॉट बेटर देन गुड, वर्स देन गुड. हमारी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी इंस्टाग्राम पर, आपने मुझे अपनी कन्फेशन बताई एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज सो क्रेजी, आई टोटली वांट टू हियर इट.
3: सो व्हाट हैपेंड इज आई मेट दिस गाय ऑनलाइन. तो ही लाइक अ वेरी जिम फ्रीक और ऐसे बॉडी बॉडी वाला, लाइक ही इज एन एथलीट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ऐसे एक्सरसाइज बहुत पसंद है. तो मतलब ही आस्क्ड मी डू यू, तो अब आई नो बिकॉज ही इज अ पर्सन लाइक दैट, तो उसको एक्सपेक्टेड होगा कि उसकी बंदी होगी वो भी ऐसे हो. तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं भी ऐसे रनिंग वनिंग करती हूँ और जाती हूँ. तो इट वेंट ऑल वेल. सो अबाउट एक महीने का चैट करने के बाद वी वेंट टू अ वेरी क्यूट सा कैफे एंड वी हैड फन. एंड उसके बाद ही सेड आई हैव एन आइडिया. तो आई सेड व्हाट? तो बोला कि नेक्स्ट डेट पर ना हम लोग सुबह रनिंग चलेंगे 6 बजे. तो मैं बोला वो इंडिया गेट के पास वाला वो जो होता है ना, वहाँ पे ऐसी ग्रीनरी भी होती है और रनिंग भी होगी और एकदम बढ़िया हो जाएगा 2-3 किलोमीटर. मैं कद 2-3 किलोमीटर उसके लिए बहुत कम. मैं 500 मीटर सोचू ऐसे भागने के लिए तो ही मैं ऐसे सांस से फूलने लग जाऊंगी, किसी बुटिया हो गई हूँ मैं. एंड एक्सपेक्टिंग नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ कॉट अप इन द सिचुएशन कि अब अगर मैं उसके साथ गई तो क्या ही होगा.
1: Oh my God, you poor thing.
3: वो 6 बजे उठा है, task, right, रोशी?
1: तो अब आप
3: कौन होता
1: है? I agree. अब आप बोलो ऐसे झूठ गंदे गंदे से, पकड़े गए या अभी पकड़े जाओगे? अगर आप उसके साथ भागने जाओगे वो तो 2 किलोमीटर ऐसे चल लेगा और आप 500 मीटर में आपकी जो हालत होगी, ओ माई गॉड.
3: तो यार बहुत हॉटनेस दे के झूठ बोला जाता है. उनकी बॉडी बॉडी ऐसी होती है, he's like, पूरा biceps, biceps, like.
1: तो बेसिकली आप करने क्या वाले हो अब? लाइक आई मीन यू आर जस्ट स्टक विद हिम. आई गेस आई जस्ट हैव टू रोशिफाई यू.
3: या बट व्हाट आई थिंक इज कि मैं उसको बोलूंगी कैसे मेरा पैर उड़ गया ऐसे थोड़ा सा भाग एंड देन ही विल हैव टू पिक मी अप कैरी मी, वोंट दैट बी टू रोमांटिक?
1: हाँ, लेकिन आप इमेजिन करो कि हफ्ते में वो 4 डेट्स ऐसी कर रहा है आपके साथ जिसमें वो भागना चाहता है. आप 4 डेट्स पे तो आपका एंकल नहीं ट्विस्ट हो सकता था. रोमांस असाइड, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर ले मेरी जान. आपको सीरियसली रोशिफिकेशन की जरूरत है और रीथिंकिंग की जरूरत है. रीथिंकिंग आपको खुद करना पड़ेगा, बट रोशिफाई कर लूं आपको?
3: यस श्योर.
1: आप ले लो मुझसे रोशिफिकेशन.
4: यू've been roshified.
1: क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है ना, उसका मुझे आइडिया ही नहीं है कि उसको पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला है कि नहीं, या आप सच में एक फिटनेस फ्रीक बन जाओगे. वैसे आपकी इस कॉन्वर्सेशन और डेट के बीच में कितने दिन है?
3: ये 4 दिन है.
1: मैं बोलने वाली थी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो भागने की, 4 दिनों में तो कुछ ना हो पाए दीदी. यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड दैट लाइक ही रियली लाइक्स यू एंड ही ओवरलुक्स द फैक्ट कि आपने से झूठ बोला था. बट ऑल द बेस्ट मेरी जान, इस मुस्कान की चमकान कभी खत्म ना हो
3: कहीं और.
1: मैं बोलना नहीं चाहती. ऑल द बेस्ट टू यू बेब. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है देन मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची का।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गाड़ी है ना आपके पास भी, आपकी गर्लफ्रेंड के पास भी, फिर भी वंस इन अ व्हाइल एक कैब राइड ले लिया करो इकट्ठे. एक्चुअली द थिंग इज, मेरा एक्स और मैं ना, हम हफ्ते में एक बार डेट पर कैब में जाते थे. इसलिए क्योंकि तब उसे नहीं गाड़ी चलानी होती थी, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है. वी यूज़ टू यूज़ दैट टाइम टू होल्ड हैंड्स. और जितना रोमांटिक होल्डिंग हैंड्स होता है ना, उतना रोमांटिक शायद मेकिंग लव भी नहीं होता है. आई डोंट नो, ऐसा मुझे लगता है. बट दैट्स बिकॉज मैं एक ओल्ड स्कूल रोमांटिक हूँ, और मेरे हिसाब से होल्डिंग हैंड्स, किसिंग, ये एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होते हैं एक रिलेशनशिप के, जिसमें लाइक आजकल के रिलेशनशिप्स में जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है. बट अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है ना, होल्डिंग हैंड्स विद ईच अदर जब आप एक डेट पर जा रहे हो, आई थिंक यू शुड टेक अ कैब एंड यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस आइडिया. इसे ट्राई करके देखना. नो मैटर आपकी कितनी भी बड़ी गाड़ी हो ना, कैब में हाथ पकड़ने की बात ही कुछ और होती है. मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना फॉर दिस टिप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड ऑनेस्टली आई ऑलवेज बिलीव, जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe aap. Ab bari hai for the hottest pop music. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me. Instagram pe mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest gaano mein ek nahi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic. A special shout out all this and more. To seedha shuruaat karti hoon is hafte ke countdown ki with Ghana number 10. Sanju Rathod की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर. रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है. मुसाफिर कैफे से है ये गाना. गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanaka. This show is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉसओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स एंड आई हैव टू एडमिट आई कैन नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना मलयालम में, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसमें बेसिकली बात हो रही है एक लड़की की, उसकी स्माइल, डिम्पल्स, उसकी आंखें, इनक्रेडिबल एफ्रो R&B इन्फ्लुएंस्ड प्रोडक्शन एंड अ उबर मॉडर्न ग्रूव। एंड देन श्रेया घोषाल का हुक टेक्स दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल। आई थिंक दैट्स द रीजन इस गाने में लैंग्वेज का कोई बैरियर है ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बीट। अब श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अर्जुन, KDS, रॉन एंड 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके इट्स अ गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। आया और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा

0: कृष्णा एंड धंधा न्योलीवाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका, 3 हफ्तों से काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika, and this show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, bindaas aake hit me up. Gaana number 5 par humne suna Kalyani. Ek Malayalam gaane mein Shreya Ghoshal ne apna Hindi remix diya hai. The world of pop music is so diverse that ye ek box mein aa hi nahi sakta hai. आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है, फिल्म, बिग मेलेडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस। वो वॉइस वही है, बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद द सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक हु इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया, जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है, लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है, इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन अनुराग मिश्रा के लिरिक्स, बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: कैसेट क्लासिक,
1: हमारी कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए.
1: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में. 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था. सामी मरूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज. इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है. आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो. एंड कुछ तो बात है, अक्टूबर के माहौल में हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनी वे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है. आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूजनल. वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाइज थोड़ी ज्यादा फील होती है. एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो इज द परफेक्ट साउंडट्रैक टू माय अक्टूबर इवनिंग. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. थ्रोइंग बैक टू आवर क्लासिक्स, बाबुल सुप्रियो की आवाज में दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिस्टिंग टू गाना एनी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: की टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और आशिका है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा अरोरा की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बाजरा की कॉम्पोजिशन है, इनका म्यूजिक शर्वी यादव, बाजरा का गाना, गाने का नाम है बैंगर। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बैंगर is at the top. Dono gaane back to back only on Gaana Indie Top 10. Pandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अज्जू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: दीवाना.
4: एक दीवाना शहर में.
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.
4: दो दीवाने शहर में.

रूना लैला की आवाज है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू है, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जीन्स पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आर डी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आर डी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक, ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वाली हो ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म लाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा व्हाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये होने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीत राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है।

0: बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। दी ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

रणधीर कपूर जी ने ऐसे कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। आप ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वॉन्टेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सेपरेशन को सोल्यूशन नहीं लास्ट ऑप्शन क्यों माना जाना चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर अंजन दत्त जो हैं वो बंगाल के बहुत अच्छे आधुनिक सिंगर हैं और मुझे बहुत पसंद है। उनकी बहुत प्यारी कविता है, उसमें कुछ लाइनें हैं बंगला में है कि चौधरी देर एकुश तोलाए मोदेर नेशाए ऊंचू गोलाए झगड़ा चौले गोभीर रात्रे लाज लज्जार बांध भेंगे जाए। इसका मतलब ये है कि चौधरीज जो हैं वो 21 माले पे या फ्लोर पे रहते हैं और उनकी ऊंची आवाज़ में दारू के नशे में बहुत झगड़ा होता है और लाज सम्मान की सारे जो हदें हैं वो पार हो जाती हैं। इस बारे में वो दो लाइनें बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। संपत्ति के बारे में कोई प्रॉब्लम है, वो अपने रियल लाइफ को लेके बहुत सारे गाने लिखते थे और शायद कभी ना कभी इनके साथ ऐसा परिवार में या बिल्डिंग में हुआ होगा, उन्होंने लिखा होगा। और कई बार ये हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बहुत बार नेबर्स कुछ होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते हैं, नॉइजी होते हैं, लाउड होते हैं एक्सेट्रा, और हम अक्सर कहते हैं कि जानवरों के तरह रहने से बेहतर है कि दोस्त की तरह अलग अलग हो जाओ। इट्स ओके टू जस्ट स्प्लिट अप, रोज लड़ाई मत, झगड़ा मत करो। लेकिन उससे जो उपजी लड़ाई जो होती है, ये जो रोजमर्रा की जो मुठभेड़ होती है उससे जो उपजी जो लड़ाई होती है, ऐसे इतना उथल पुथल वो पैदा करता है, उससे आखिरकार सबको अपनी गलती को

0: स्वीकार करने का मौका भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है या अलग होना ही बेहतर है?
1: मेरे हिसाब से अलग होना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये कमजोरी की निशानी अंटिल एंड अनलेस कोई सीरियस बात है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो लास्ट ऑप्शन नहीं होता, वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। फिजिकल अब्यूज है तो वो लास्ट ऑप्शन नहीं होता, वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। लेकिन जब अब परिवार है उसमें चार पांच जने हैं, बिल्कुल अलग हैं, राय अलग है, सोचने का तरीका अलग है, चॉइसेस अलग हैं, खाना अलग पसंद है, छोटी छोटी बातें, किसी को पंखा ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, कितनी छोटी छोटी बातों पर संस्कारों के टकराव करने की जगह संस्कारों की रास करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने रास लीला देखी होगी गुजरात में गरबा के समय क्या होता है, इवन इन मुंबई सबके हाथ में दो दो डांडिया है तो डंडे ही ना, और किसी को डांस आता है किसी को नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं तो वो डांस होता है
0: जी।
1: अगर आप न मिल करके करें, कोशिश नहीं करें तो वो युद्ध का मैदान बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ही जीवन के अंदर सब अलग हैं। एवरीबडी हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मेरी जर्नी के अनुसार मेरे संस्कार होते हैं, मेरी नेचर होती है, तो उसमें मिल करके मतलब मिल करके चलना ही रिश्तों के अंदर मिल करके चलना होता है। किनारा करने का ऑप्शन तो दिखाता है कि हम इमोशनली वीक हैं, हम मिल करके नहीं चल पा रहे हैं, टेकिंग अ टोल ऑन मी, उसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत दर्द में जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं ठीक है फिर किनारा कर लो।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ईगो से हुई लड़ाई रिश्तों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, लेकिन जब रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज चिल्ला चिल्ली हो रही है, आसपास के जो पड़ोसी है वो भी आपसे परेशान है, तो क्या साथ रहना सिर्फ एक दिखावा बन के नहीं रह गया? क्योंकि सबको अपनी अलग अलग पहचान भी चाहिए।
4: रोज झगड़े क्यों हो रहे हैं?
3: अब वो तो मुझे नहीं पता।
4: मैजिकली तो झगड़े खत्म नहीं होंगे ना
3: जी।
4: देखो, जो दो जने प्यार से भी रहते हैं ना, वो भी सेम नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की विशेषताओं को समझ करके उनके साथ चलना सीख लिया होता है। आप कोई भी हैप्पी मैरिज में जाकर पूछो, आप दोनों सेम है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट रहे होंगे,
4: और वो कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट उन्होंने हमेशा दर्द से नहीं किए।
3: नहीं, कभी कभी बड़े प्यार से भी किए।
4: प्यार से किए, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये इनकी विशेषता है, ये इनकी कमी है, इनकी कमी को मुझे स्वीकार करना है, विशेषताओं को करना है, मिल करके चले। अब जिस घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, उसमें क्या झगड़े हो रहे हैं? झगड़े का कारण है एक्सपेक्टेशन ना। आपको मेरे तरीके से ही चलना पड़ेगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो मेरे तरीके से नहीं चल पाएंगे, वी आर डिफरेंट, वी अलाउ ईच अदर टू बी व्हाट दे वांट टू बी, उनको स्पेस देते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते, तो फिर एंगर और ये सब नहीं होता। अब पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको साथ रहना है कि अलग होना है। पहले तो एक ये डिसीजन है। अगर साथ रहना है तो अपनी पावर को बढ़ाएं, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदलें, कंट्रोल को इन्फ्लुएंस में बदलें, कोई बात कहनी है उसके कहने के तरीके को बदलें। झगड़े का कारण है दोनों की ईगो आपस में टकरा रही है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर इंसान अपनी अलग जर्नी पर होता है, इसे समझना रिश्तों के लिए क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो परिवार में किस हद तक आप समझौता कर रहे हैं, कब तक आप बोले कि हाँ दिस मच एंड नॉट मोर?
4: समझौता नहीं है, समझौता तो वर्ड ही ऐसा लगता है, समझौता था मतलब वो एक सप्रेशन की फीलिंग देता है, वो कब तक ही होगा, दो चार दिन होगा, दो चार महीने होगा। इट इज नॉट समझौता, इट इज अंडरस्टैंडिंग। सी लुक एट इन योर फैमिली, एवरी फैमिली, मुझे एक बात बताए, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे हैं ना, क्या वो हमारी तरह होते हैं?
3: नहीं, बिल्कुल अलग होते हैं।
4: जब हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं हो सकते, हु कम फ्रॉम अस, हमारा ब्लड रिलेशनशिप है उनके साथ, दे कम फ्रॉम अस। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं दे आर माय एक्सटेंशन, वो भी हमारी तरह नहीं होते और थोड़े अलग नहीं होते,
3: बहुत अलग होते हैं,
4: इतने अलग होते हैं कि कई बार हम कहते हैं
3: हमारे बच्चे
4: हमारे बच्चे हॉस्पिटल में कोई बदल तो नहीं गया यहाँ तक, बिकॉज वो बच्चा नहीं है, वो हस्बैंड नहीं है, वो वाइफ नहीं है, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी। तो वो सोल की जो आइडेंटिटी है, क्वालिटी है, नेचर है, वो डिपेंड करेगी उसकी जर्नी पर, उसके एक्सपीरियंसेस पर। वो ट्रस्ट करता है, डाउट करता है, ऑनेस्ट है, बात बात पर झूठ बोल देता है, डिपेंड्स ऑन उनकी जर्नी क्या रही है, कितनी ट्रॉमेटिक रही है, कितनी लविंग रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जर्नी से कि ऐसे ट्रस्ट करना चाहिए ना सबको।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एडजस्टमेंट और सप्रेशन के बीच का फर्क क्या है और हम अक्सर गलत चॉइस क्यों कर लेते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक तरह से तो फिर कह सकते हैं ना कि जॉइंट फैमिली कहीं ना कहीं समझौते का परिकाष्ठा आप कह सकते हैं, बिकॉज फैमिली में क्या होता है, ड्रामा होता है, अलग लोग होते हैं, कुछ पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं, सबके जो करियर होते हैं, जो पाथ होते हैं, जीवन जीने का तरीका होता है, खान पान होता है, सब अलग होता है। तो ये इतने एडजस्टमेंट से चलता है तभी ये चल पाती गाड़ी।
4: एब्सोल्युटली, लेकिन वो एडजस्टमेंट में आपको नेचुरली आप कर रहे हैं ये आप सप्रेस कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सब कुछ तो आपके अनुसार हो नहीं सकता ना, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू योर ट्यून्स। घर में भी जितने लोग हैं उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने एम्बिशंस हैं, अपनी डिजायर्स हैं। एक है कि आप हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और एक है कि आपको ही उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। देखो, जैसे ही आप गिविंग मोड में चले जाते हैं, यू आर एम्पावरिंग द फैमिली। जैसे ही आपका हाथ ऐसा होता है कि मुझे चाहिए, तो फिर आप वो गिनने लग जाते हैं, मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, मैंने कितना एडजस्ट किया। आपने अगर कोई सैक्रिफाइस किया भी, फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं मैंने आपके लिए कंट्री छोड़ा, मैंने आपके लिए देश छोड़ा, मैंने आपके लिए जॉब छोड़ा। हम लोग कई चीजें छोड़ते हैं, अब उसको आप समझौता कहें, एडजस्टमेंट कहें, सैक्रिफाइस कहें, पर अपने साथ बैठ करके कॉन्वर्सेशन करें, मैंने छोड़ा पर क्यों छोड़ा, मैंने डिसाइड किया था ना वो छोड़ना, इसलिए किया था क्योंकि उसमें उनका कोई भला था या कोई फायदा था या उनको कोई बेनिफिट था, और उनकी खुशी में
3: मेरी खुशी थी, इसलिए मैंने
4: ये अपनी खुशी के लिए किया। भले हम वो डाल उनके ऊपर देते हैं,
3: दरअसल हमने अपने लिए किया,
4: हमने किया अपने लिए। जिसको ये पता होता है, सो मेनी वुमेन हु चूज नॉट टू वर्क, देयर सो मेनी वुमेन हु चूज कि हम प्राइमरी केयर टेकर हैं इस समय पर, वो अपने जॉब को गिव अप करते हैं, कुछ भी, कहीं खुशी से करते हैं, कहीं कहते हैं मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है, मैंने बहुत चूज किया, आई चूज टू डू दिस। सेम चीज की होती है दोनों ने, किसी को लगता है मैंने बहुत त्याग किया, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, और किसी को लगता नहीं, आई चोज दिस, मैंने तो ये अपनी मर्जी से किया है, वो डिपेंड करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कमी रिश्तों को कैसे कमजोर करती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कुछ परिवार में ऐसे होते हैं ना, जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं वो बहुत पास्ट में रहते हैं, वो यादों में अपने सफर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन जिंदगी जो है वो बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है, सदी बदल गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस तरह से 40 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले गाड़ी चलती थी, आज भी वैसे चले। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
4: ये होता है क्योंकि कई बार जो चेंज है वो शायद देख भी नहीं रहे क्या चेंज होता है, अपने बबल में होते हैं ना, कई बार उनको पता भी नहीं चलता कि बाहर कितना फास्ट चेंज हो रहा है। इसमें एक बहुत कम्युनिकेशन की जरूरत है। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, हम करते नहीं है, नाराजगी हो जाती है। ये समझना कि वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट जेनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बातें ही नहीं समझ में आती। उनका हमारा जीवन जीने का तरीका, खान पान, उठना सोना समझ में ही नहीं आता। तो पहले मैं भी अंडरस्टैंड करूं कि वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके जीवन और हमारे जीवन बहुत अलग है, अलग रही है। यू नो, द मोमेंट यू एक्सेप्ट द पर्सन, आपसे एक वाइब्रेशन उन तक जाता है रिस्पेक्ट का।
3: बिल्कुल,
4: हर व्यक्ति रिश्तों में एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए, इसको गांठ बांध ले। बातों में बाद में जाए, पहले व्यक्ति, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको जब हम ये कहते हैं ना कि आप अपने नजरिए से बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो, यू आर राइट, किसी को ये नहीं सुनना यू आर रॉन्ग। ये है छोटी सी बात, पर जैसे आप किसी को कहते हो आप गलत हो, चाहे बड़े छोटों को कहते हैं आप गलत हो या छोटे बड़ों को कहते हैं आप गलत हो, वहीं पर ही दोनों सुनना बंद कर देते हैं।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: क्योंकि रिजेक्शन आ गई ना, यू रिजेक्टेड द पर्सन। तो पहले एक्सेप्ट करें, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अपनी बात कहें, और अपनी बात कह करके गिव देम सम टाइम टू अब्सॉर्ब, गिव देम सम टाइम टू अंडरस्टैंड। टाइम लगेगा इस चीज के अंदर, जो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं है, खाई नहीं है, करी नहीं है, आप सोचे वो एकदम उसको एक्सेप्ट कर ले, होता तो नहीं है ऐसा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड इज़िलन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओकट्री रोड, इज़िलन, न्यू जर्सी।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिजिड सोच क्यों हेल्दी रिलेशनशिप्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त है वो ये करने की कोशिश करती है। वो कहती है, जब भी मैं परिवार में जब भी मैं अपने घर जाती हूँ पापा के, तो पापा उसके कहते हैं मेरा घर है, यहाँ पे वही रूल्स चलेंगे जो मेरे हैं, तुमको कुछ भी बदलना हो अपने घर जाके बदलना, मेरे घर में कुछ चेंज करने की कोशिश मत करना। तो कभी जब आप देखते हैं सामने वाला इतने मतलब अटके हुए हैं कुछ चीज़ों पे, या बहुत जिद पे अटके हुए हैं या बहुत स्टक हैं, तो फिर कैसे बातचीत आगे बढ़े?
4: इसीलिए तो रिश्ते खराब होते हैं ना। अगर आप बहुत रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, तो फिर नेचुरली वो रिश्ते खराब होते हैं। उसमें तो दोनों तरफ से है। अगर वो फादर इतने रिजिड हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि आपका वो रिश्ता धीरे धीरे खराब होगा, मतलब वो व्यक्ति दूर होना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति को आने के दिल नहीं होती, बात करने के दिल नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति का मन कहता है ये मुझे समझते ही नहीं है, तो वो व्यक्ति दूर होगा। और इस व्यक्ति को फिर क्या करना पड़ेगा, ये व्यक्ति अब समझता है कि वो नहीं बदलते, तो फिर आप बहुत ज्यादा रिश्ते को खराब करने के जगह फिर आप यू फाइंड अ मिडिल वे, कि जहाँ आप अपने मन में शुभ भावना रखते हैं और जितना आपसे मिला जाता है या जितना आपसे एडजस्ट किया जाता है आप करते हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मन में बिटरनेस नहीं लानी चाहिए।
3: बिल्कुल, मन में बिटरनेस नहीं लानी। कुछ दो तीन चीजें उसने मुझसे शेयर की। वो कहती है कि अब मैं 15 साल की बच्ची नहीं रही, अब मैं 40 के ऊपर हूँ। मेरे पापा आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 11 बजे के अंदर घर आ जाऊँ। तो कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें वो, और ऐसा नहीं कि मैं रोज 12 बजे घर आ रही हूँ, कभी कुछ हो गया, लेट हो गया एक्सेट्रा, वो आके दरवाजे पे कह रहे हैं तुमको कितनी बार कहा है कि मेरा घर है, तुम 11 बजे नहीं आ सकते तो बाहर रहा करो। तो वो कहती है कि मुझे कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब क्योंकि मेरे पापा हैं, मैं रहना चाहती हूँ, जब शहर में आती हूँ उन्हीं के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ये क्या है। तो लड़ सकती नहीं, लड़ने का फायदा नहीं, क्योंकि कहते थे मेरा घर है, गेट आउट मुझे होना नहीं है। तो बड़ी परेशान रहती है वो।
4: इसीलिए तो आपको कह रही हूँ ना कि अगर वो फादर ऐसे बिहेव करेंगे तो ग्रेजुअली वो आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर उनको आना है और उनको लगता है कि उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल राइट है, कर्म उनका गलत नहीं है, भले उनके फादर को लग रहा है लेकिन उनका कर्म राइट है, और राइट कर्म के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम गलत करें और कोई हमें रिजेक्ट करे तो अलग बात होती है। मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और तो भी हमें कोई रिजेक्ट करता है, उस समय सहन शक्ति ये लगती है। सहन शक्ति, यहाँ सहन करना पड़ता है कि हम वो कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी अपने दिल में और अपने मन में अपने फादर के प्रति बिटरनेस
3: नहीं है।
4: इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अंदर तो ये आता है ना जो आप कह रहे हो, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो मुझे समझते क्यों नहीं है। आध्यात्मिकता में हम इसको क्या कहते हैं, वृत्ति, एटीट्यूड। सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। समझने की बुद्धि हमें मिली है तो हमें समझ में आता है ये व्यवहार सही है ये गलत है, लेकिन उसको वृत्ति में नहीं बिठाना। मतलब अगर आपकी कमी को मैं अपनी वृत्ति में बिठाती हूँ तो मेला कौन होगा?
3: मैं।
4: क्योंकि बार बार जब आप मेरे सामने आएंगे ना तो वही संकल्प उठेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अंदर से डिप्लीट मैं हो रहा हूँ। अपने अंदर को साफ रखना, हरेक की विशेषता को रखना, हरेक के प्रति गुड विशेस रखना, यू नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी,
3: अपने लिए कर रहे हैं।
4: सो इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आप गलत हैं, आई ट्राई टू होल्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट इन यू इन माय हार्ट। अपने दिल के अंदर फिर भी हम वही रखना चाहेंगे जो आपकी क्वालिटी है। कमजोरी का पता है पर उसको अंदर समाये नहीं, अपने चित्त को साफ रखें।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
8: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
7: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: Rang reza, rang reza.

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सौरव रॉय 12-7 से लिखते हैं कि कभी कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि लगता है सब छोड़कर हार मान लूं। समझ नहीं आता क्यों मन में ये ख्याल आता है कि सब कुछ खत्म कर दूं। जब जिंदगी ही मायूस लगने लगे तो फिर जीने का मतलब क्या ही रह जाता है।
3: सी, अगर आप सब कुछ खत्म कर देंगे, जो कईयों को सवाल आता है, तो उनको लगता है उनका दुख खत्म हो जाएगा। पर उनका शरीर खत्म होगा। जो हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, वो खत्म होगा। लेकिन जो दुख सुख अनुभव कर रही है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो सोल है। तो सोल को फिर जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम लेना है, और जो उसका कार्मिक अकाउंट है वो उसको सेटल करना ही पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इस दुनिया के किसी भी चैलेंज से भागने की कोशिश कर सकते हैं, आप कार्मिक अकाउंट से नहीं भाग सकते। वो किसी न किसी रूप में आपके पास आना ही है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेप्स, फायदा नहीं है उसमें कुछ। अगर आप ट्रूथ को जाने, आप नहीं बच सकते। और ही कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, अगर आप अपने समय पर शरीर नहीं छोड़ते, तो नेक्स्ट जो सोल को जो नया कॉस्ट्यूम लेना है, वो भी रेडी नहीं होता। तो जिसको हम कहते हैं भटकना, थोड़ा समय भटकना पड़ता है, आत्मा को भटक रही है, दैट इज ओनली बिकॉज आपके पास सटल बॉडी है, पर आपके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इट इज वेरी पेनफुल। इसलिए ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने की जगह आप कोई ऐसी जगह पर जाए जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिले। स्पिरिचुअलिटी इज अ क्रच फॉर वीक कहते हैं, पर वो सच्चाई भी तो है ना। अगर आप वीक फील कर रहे हैं, जैसे अगर कोई वीक बॉडी से वीक होता है, तो वो बैसाखी का सहारा लेता है, वो स्टिक का सहारा लेता है। क्यों? कि वो धीरे धीरे उस सहारे से इंडिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंट नहीं हो जाए। कई बार सहारे चाहिए होते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो आप भी कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा राजयोगा टीचर, कोई मेडिटेशन टीचर, 3 महीने अपने को दीजिए। कुछ कीजिए तो, कुछ एफर्ट तो डालें। तो वही जो आपका मन इतना मायूस है, उसी मन को हिम्मत और उमंग उत्साह आ जाता है। एंड सो मेनी टाइम्स व्हेन आई मीट द स्टूडेंट्स, जब हम मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग पीरियड से वो आते हैं, और 3 महीने के बाद मैं कई बार उनको पूछती हूँ कि अभी थोड़ा बेटर है, सब ठीक है? सो समटाइम्स यू नो उनका आंसर इतना सुंदर होता है कि सिस्टर, बाहर तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम ठीक है।
2: वाह, क्या बात।
3: तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट होता है कि अभी वो सेम चैलेंज उनके ऊपर उतना इन्फ्लुएंस ही नहीं डाल रहा।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो सौरव, आई होप आप इसे जरूर प्रेरणा लें, और खत्म करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होता मेरे भाई। जिंदगी है तो चलती रहेगी, आपकी जो सोलो जर्नी है वो आगे भी जाएगी। तो प्लीज आप सिस्टर श्रेया की बात जरूर सुने, कोशिश करें एक सहारा लेने की, शायद इससे आपकी परेशानी जो है वो कम हो जाए।
3: 100% होगी, कोशिश भी नहीं करना ही है, बिल्कुल भी वो नेगेटिव थॉट में जाना ही नहीं है, और हो जाएगा। एवरीबॉडी इज देयर।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
3: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
4: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
9: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्र विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, सुरेखा जी हैं, वो लिखती हैं कि मैं अकेली रहने वाली व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड हूँ। पिछले कई सालों से मेरे ऊपर वाले फ्लैट में अलग अलग लोग मुझे लगातार परेशान करते आ रहे हैं। तेज आवाजें, पीछा करना, निगरानी जैसा व्यवहार और समाज की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। मैंने पुलिस को भी शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस मानसिक और आध्यात्मिक तनाव से मैं कैसे बाहर निकलूं?
3: See, out of my experience, जब हम ये कहते हैं ना कि ये भी मेरे साथ गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, सब मेरे अगेंस्ट हैं। जब सब के लिए हम कहते हैं ना अगेंस्ट है, तो कई बार प्रॉब्लम वहां नहीं होती। तब कई बार थोड़ा सा रुक के ये भी देखना चाहिए कि कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। ऐसा होता है ना, हमने काला चश्मा पहना तो हमको सब काला दिखाई देता है। एकाध के लिए आप कहें कि वो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करता, तो समझ सकते हैं कि वो एक व्यक्ति शायद ठीक नहीं हो। पर आप कहते कोई भी ठीक नहीं है, जिनके साथ हम रहते हैं वो भी ठीक नहीं है, जिनके साथ काम करते हैं वो भी ठीक नहीं है, समाज भी ठीक नहीं है, जो ऊपर रहते हैं वो भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक है पर हम हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है और हमें सब गलत दिखाई दे रहे हैं। और उसका कारण ये भी होता है कि जितने हम खाली होते हैं उतनी फॉल्ट्स हमें नजर आती है। हम जितना अंदर से खाली हैं, दुखी हैं, हमें संसार बहुत ऐसा डार्क दिखाई देता है, और जब हम भरे हुए होते हैं तो वही संसार हमें ठीक दिखाई देता है।
2: तो अभी इनके लिए आपकी क्या राय है, वो क्या करें?
3: अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, औरों की कमियां देखने की जगह विशेषताएं देखनी चाहिए, अपने को एम्पावर करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उनको अपनी हीलिंग करनी चाहिए।
2: और आप क्या इनको भी किसी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि शायद ये सारी चीजें वो कर रही हैं लेकिन उनको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा।
3: बिना मदद के तो हो ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बिना मदद के बहुत मुश्किल है। आप चाहे नहीं भी फिजिकली अगर कुछ विजिट करते तो भी अगर आप किसी साधन से भी थोड़ा सुनते हैं, वैसे तो फिजिकली इन चीजों में, बिकॉज दिस इज नॉट इन्फॉर्मेटिव ना, मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस। अगर कोई चीज केवल इन्फॉर्मेटिव होती है, एजुकेशन के लिए होती है, आप साधन से भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आदि आप बहुत साधन से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्लेस का बहुत इम्पैक्ट होता है, कराने वाले व्यक्ति का बहुत इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब हम किसी ऐसी चीज का सपोर्ट लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, एटीट्यूड, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, पर हम वेट करते हैं कि विश्व परिवर्तन हो, तो वो नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ में दो चीजों का वेट करोगे तो करते ही रह जाओगे, एक तो सुबह सुबह वर्कआउट करने का मोटिवेशन और दूसरा एक्स का वो आई एम सॉरी वाला मैसेज। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, और अभी फिलहाल तुम कहीं से भी सुन रहे हो मेरी सारी देसी जनता, या तो तुम ट्रैफिक में फंसे हो या कॉफी के सहारे चल रही तुम्हारी लाइफ, या फिर ऑफिस के लैपटॉप के सामने बैठकर सीक्रेटली माँ के हाथ ये आलू के परौंठे याद कर रहे हो सुबह सुबह। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अगले कुछ घंटों तक हम लोग साथ में रहने वाले, यानी कि मैं और तो

मैं बोले तो प्रिसिला लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स हर रोज, तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा मिर्चीदार बनाती हूँ। यहाँ पर लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये गारंटी है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें तुम भूल जाओगे, पोस्टपोन कर दोगे, या फिर उनका टेंशन लेना तुम कम कर दोगे। बिकॉज मेरे पास है तुम्हारे लिए ढेर सारी गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट एंड ऑफकोर्स मिर्चीदार बैंगर्स जो मैं प्ले करने वाली हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में मैं भी आती रहूंगी। अभी फिलहाल तुम ये सुनो, इंजॉय करो और मुझे जाकर फॉलो भी कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी चाहिए 9033647244। अब दोस्ती अपनी पक्की हो चुकी है तो स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है.
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
15: 2108069.
16: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
17: अरे कहना क्या चाहते हो?
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा.
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हिस्ट्री में ना कुछ डेट्स ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा खास होती है, और ढूंढा जाए तो हर दिन हिस्टोरिकली काफी खास होता है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, एंड लेट्स फाइंड आउट आज के दिन क्या हुआ था। 768 में शार्लमेन और कैरलमैन बेन ज्वाइंट किंग्स बने थे, मतलब की पावर शेयरिंग कोलैबोरेशन पर चला था उस साल। 1446 में कोरिया का हांगुल अल्फाबेट पब्लिश हुआ, फाइनली वर्ड्स को अपनी खुद की स्क्रिप्ट मिल गई। 1635 में रॉजर विलियम्स को मैसाचुसेट्स से बैनिश कर दिया गया उनके रेडिकल रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। लगता है आजकल भी ऐसे कुछ हो रहा है दुनिया में। 1701 में येल यूनिवर्सिटी चार्टर हुई, तो कॉलेज के असाइनमेंट्स और ऑल नाइटर्स की हिस्ट्री काफी पुरानी है भाई। 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन बना, लेटर्स को दुनिया भर में भेजने का सिस्टम बेटर हो गया। आज व्हाट्सएप के जो ब्लू टिक्स है ना, वो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। 1962 में युगांडा को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला, और 1963 में इटली में वाजोंड डैम के पास मैसिव लैंडस्लाइड से डेडली वेव आई, जिसमें लगभग 2000 लोगों की जान चली गई। 1967 में रेवोल्यूशनरी शे गुवेरा को बोलिविया में एग्जीक्यूट किया गया। 1986 में द फैंटम ऑफ द ओपेरा ने लंदन के वेस्ट एंड पर स्टेज डेब्यू किया। एक तरफ रेवोल्यूशन, दूसरी तरफ थिएट्रिकल ड्रामा, वाह क्या सीन था। 2000 पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और 2012 में पाकिस्तान की यंग एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गई। लड़कियों की एजुकेशन के लिए उनकी आवाज आगे चलकर दुनिया में काफी गूंज रही है। और ये है आज के दिन की, यानी कि अक्टूबर 9th की हिस्ट्री। और आज का फ्यूचर है, आगे सुनने वाले हो तो मिर्चीदार बैंगर्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से नोट करो मुझे सोशल्स पे कहाँ फॉलो करना है। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, slime से लेकर crafts तक, designed for every child's age and theme. साथ में pizza, popcorn और unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए. इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
15: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स. Visit viranijewelers.com.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची का.
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए जब

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: घर खरीदना चाहते हो और उसके बारे में काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो अगला अपडेट तुम्हारे लिए है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची लिसनर्स. समीर डेनी, सीईओ ऑफ एसटी कैपिटल फंडिंग, विद योर एसटीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट. सम गुड न्यूज़ टू सेंड यू इनटू द वीकेंड. रेट्स इंप्रूव्ड यस्टरडे. द 10-year ट्रेजरी नोट पुल्ड बैक टू इट्स लोवेस्ट लेवल्स इन अबाउट अ वीक आफ्टर अ ब्रूटल 7-week क्लाइम. वी'ल टेक इट, बट व्हाट टर्न्ड इट? स्ट्रांग डिमांड एट दिस वीक्स गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस, प्लस वर्ड दैट द यूएस वोंट स्ट्राइक इरान बिफोर द नवंबर elections, which cooled oil prices. Both outweighed a Fed that's still warning more hikes may come. But here's something to chew on this weekend that almost no one is talking about. Right now, because rates are higher, a lot of buyers are sitting on the sideline. That means less competition, fewer bidding wars, and sellers who actually are willing to negotiate. You've got leverage right now that disappears the moment rates drop, because then everyone floods back into the market and prices jump. So here's the smart play. When you find the right home, lock in a good price while you've got the upper hand. Because the price is forever, the rate is only temporary. You can always refinance later. You can't renegotiate what you paid for. And here's how to keep the payment comfortable in the meantime, our buy down program. It drops your rate nearly a full percent or more for the first year at no cost to you. So your payment works now while you wait to refinance even lower down the road. So if you're house hunting this weekend, reach out to me. Call or text me anytime and I'll run real numbers for you on the spot. My number, 908-227-6042. Or visit us at stcapitalfunding.com. This is Samir Dedia with your STCF Mortgage Market Update. Welcome home and happy house hunting.
1: तो घर बैठे बैठे तुम्हें मॉर्गेज अपडेट तो मिल गया. अब ये भी पता कर लो मुझसे कैसे कनेक्ट करना है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This mortgage update is brought to you by SD Capital Funding.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
8: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
14: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
13: 15 और 16 अक्टूबर शाम

0: से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
1: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16 को।
0: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
1: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
0: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit miranijewelers.com.
5: Listener MI, back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Mirchi Mornings.
8: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
9: सुबह मम्मी के प्यार के साथ थोड़ा जैकेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये पता करने का टाइम आ चुका है। नो गेस वर्क नीडेड। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में वेदर अपडेट लेकर आई हूँ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 47 डिग्री फारेनहाइट, बट हवा की वजह से फील हो रहा है 44 डिग्री फारेनहाइट। तो प्लीज सिर्फ कैलेंडर देखकर समर आउटफिट मत निकाल लेना, ओके? दिन में सनशाइन होने वाली है, टेम्परेचर क्लाइम करेगा टू अ लवली 72 डिग्री फारेनहाइट। परफेक्ट वेदर है फॉर वॉक आउटसाइड कॉफी या फिर वो इंस्टाग्राम पिक्चर्स खींचने का जिसका कैप्शन होगा लिविंग माय बेस्ट लाइफ व्हाइल सीक्रेटली चेकिंग वर्क ईमेल्स, जो हम सब करते हैं। रेन की टेंशन है अगर तुमको तो ऑलमोस्ट जीरो टेंशन कर दो, डे टाइम में रेन का चांस नहीं है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी सिग्निफिकेंट रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। विंड्स जो है वेस्ट से अराउंड 5 to 11 माइल्स पर आवर चल रही है, तो आज हेयर को फ्री ब्लो ड्राई मिलने वाला है बाहर निकलोगे तो, लेकिन रिजल्ट्स गारंटीड नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से लगा लेना। बट लिसन, शाम को क्लाउड्स जो है वो बढ़ने वाले हैं और ओवरनाइट टेम्परेचर जो है वो काफी डिप करेगा, 46 टू 50 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है। सो लेयर के लेयर बनना आज तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा और मिड डे में सन जो है वो बाहर आ जाएगा तो तुम्हें अपना SPF 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर ही बाहर जाना है, बिकॉज यू गॉट टू केयर फॉर योर स्किन मैन। सनसेट होने वाला है 6:26 PM पर, यानी कि गोल्डन आवर सेल्फी के लिए टाइमिंग परफेक्ट है और परफेक्ट टाइम है टू फॉलो मी। चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड और साथ साथ में मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो तुम। 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। ड्रॉप मी अ मैसेज राइट नाउ। जब तक मैं चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
5: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
6: It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: तीन अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले देसी आईटी प्रोफेशनल्स, ये अपडेट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूएस ने कॉग्निसेंट, इंफोसिस, टीसीएस समेत 8 टेक कंपनीज को पीआरएम ग्रीन कार्ड प्रोसेस से सस्पेंड किया है। इन्वेस्टिगेशंस के बीच इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये मूव दोनों कंट्रीज की शेयर्ड एम्बिशन को आगे नहीं बढ़ाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्म H-1B वीजा से अलग है। इस सस्पेंशन से एग्जिस्टिंग H-1B वीजाज ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होते हैं। दो एलिजिबल एम्प्लॉयज के ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर असर पड़ सकता है। सो फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं है। अपने इमिग्रेशन लॉयर से अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन को समझो। डिटेल्स मैटर करती है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन मत करो। नंबर टू पर, जेवार में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम देने का प्रपोजल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन की अनाउंसमेंट की है। मतलब कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की फ्लाइट बुक करते वक्त डेस्टिनेशन का नाम अपडेट करने से पहले टिकट डिटेल्स डबल चेक करना बनता है। एंड लास्टली, साउथ अफ्रीकन जूरिस्ट नावनेथन नावी पिल्लई को 2026 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। इंटरनेशनल लॉ और पीस को प्रमोट करने के उनके काम के लिए वो 287 नॉमिनीज में से सिलेक्ट हुई हैं। पिल्लई एज अ वुमन ऑफ इंडियन तमिल ओरिजिन हैज हैड अ डिस्टिंग्विश्ड करियर इन ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल जस्टिस। अ रिमाइंडर दैट इंपैक्ट की कोई नेशनलिटी नहीं होती और जस्टिस के लिए आवाज उठाना ऑलवेज मैटर्स। एंड दैट वाज मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा टेस्ट कैसे करते हैं ये?
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर देगा।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% रेट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
12: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
13: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
14: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
15: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
14: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
15: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
14: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
19: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.

0: California.
1: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
4: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
5: अरे कहना क्या चाहते हो,
4: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
7: मिर्ची फ्रेश माल।
8: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: इधर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और गरबा के स्टेप्स परफेक्ट हो गए हैं तो लक के स्टेप्स को आज आजमाया जाए, बिकॉज मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल रही है गोल्ड चेन्स। यस, दैट रियल गोल्ड, नॉट समथिंग दैट समवन प्रॉमिस्ड एंड नेवर गेव इट टू यू। इट्स टाइम फॉर मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि के 9 रातों को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हर दिन जीत सकते हो तुम प्रेशियस गोल्ड चेन। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। पहला काम ये करना है कि अपना व्हाट्सएप खोलना है, उसके बाद नवरात्रि टाइप करना है और उसके बाद अपने पूरे नाम के साथ उसे भेज देना है 9033647244 पर।

या 9033 मिर्ची पर, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। लिखो नवरात्रि, अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ भेजो अभी के अभी, और फिर हो जाओ रेडी मेरे फोन कॉल के लिए। ऑलराइट, अभी फेस्टिवल की शॉपिंग कर ही रहे हो तो विजिट करो वीरानी ज्वेलर्स, जो कि ओक ट्री रोड पर है, जहां पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। और डिटेल्स के लिए veeraniejewelers.com पर जाकर विजिट करो। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
9: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry. I'm contacting 7 days pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
17: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
18: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
19: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
18: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
20: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
22: Goalie goes down the ground, goalie goes out of the ground।
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
24: एक ही होता है।
21: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ओए बर्थडे गैंग, वेयर आर यू? आज जिसका भी हैप्पी वाला बर्थडे है, सबसे पहले ढेरों बधाइयां। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, केक तुम्हारा, अटेंशन तुम्हारा और कैलोरीज। आज कैलोरीज काउंट नहीं होती है और अब काउंट करने वाले हम कि आज कौन से सुपर सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिया से बात करते हैं, शायोनी गुप्ता From Four More Shots, please. वही fabulous actress है, she's turning 41 today. और legendary सरोद maestro, उस्ताद अमजद अली खान का भी आज 81st birthday है. International birthday squad में John Lennon from Beatles and also Guillermo del Toro, the filmmaker behind The Shape of Water और Jacob Batalon, यानी कि Spider-Man का bestie Ned. हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन। अगर तुम्हारा भी आज हैप्पी बर्थडे, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल विश है कि मे योर ईयर बी फुल ऑफ प्यार, पैसा, प्रमोशन एंड ढेर सारे गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स की बात चली है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट है नवरात्रि रिलेटेड। मिर्ची के साथ 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं गोल्ड चेन्स। इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, जहां नवरात्रि की हर रात को तुमको मिल रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेशियस गोल्ड चेन जीतने की। और ये मौका जाना नहीं चाहिए, इसलिए फटाफट से पहला काम ये करो कि व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, उसे अपने पूरे नाम के साथ भेज दो 9033647244 पर राइट नाउ, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, MIRCHIPRIS। अपना पूरा नाम लिखो नवरात्रि लिखने के बाद और फोन नंबर लिखकर मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो अभी के अभी। और ओकट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स के फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स को चेकआउट करके आओ, 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर वहां पर बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, या फिर विजिट करो veeraniejewelers.com पर। अभी मिर्चीदार बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID
13: 2108069।
14: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
16: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,175. $4,175 per ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के prices पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। Definitely एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GIS सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, प्लैटिनम रिंग में सेट। आइए राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आप आज अप्रूव होने पे गोल्ड ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे राज ज्वेल्स की टीम को दे सकते हैं। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू गो, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अगर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. Welcome to the last hour of Mirchi Morning. सबसे पहले सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी सिचुएशन के बीच इंडियन एम्बेसी ने रियाद में इंडियन नेशनल्स को अलर्ट रहने की, जरूरत पड़ने पर इंडोर्स रहने की और लोकल अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने को कहा है. एम्बेसी ने ये भी अपील किया है कि अटैक से रिलेटेड अनवेरिफाइड वीडियोज और न्यूज को फॉरवर्ड ना करें. नंबर टू पर न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन से मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स दिए हैं. विजन क्वेस्ट अक्टूबर 14 को प्रीमियर होने वाली है और नई स्पाई थ्रिलर सीरीज ज़ोडियाक 2028 के लिए प्लान की गई है. और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 अभी जनवरी 2026 में आ रहा है. एंड लास्टली वेटरन एक्टर नाना पाटेकर जी का 75 इयर्स की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद इंतकाल हो गया है. उनका अंतिम संस्कार पुणे में फुल स्टेट ऑनर्स के साथ किया गया है. नाना पाटेकर अपने डायलॉग डिलीवरी, पावरफुल परफॉर्मेंस और अनफॉरगेटेबल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए हमारी हार्ट felt condolences. And that's Mirchi Hour Cut 3 for this hour. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल है, एक हरा, कौन सा काटू सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट.
2: पीछे हो गया.
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर.
2: रंग बता.
3: एक लाल, एक हरा.
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
2: आसपास
3: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
3: ठीक है.
2: एक बार हरा काट के देख.
3: हरा काट रहा हूँ.
2: धीरे से.
3: 1, 2, 3. Congratulations.
2: ताली बज रही है. कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है. हाँ.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस. आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू एनआरएस पे.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: मैं नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जब एक दूजे दे नाल काम ना करे.
13: I enjoy using inefficient and complex software, मामा.
14: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
11: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
18: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
18: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
0: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
19: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
0: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
20: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
21: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
20: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling and listen to me. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बात करने वाले हम राशियों.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is यानी कि मेष राशि. पास का इमोशनल बैगेज अब चेक आउट करने का टाइम आ चुका है. डिप्लोमेसी यूज करो, हर बात पे कोर्टरूम ड्रामा जरूरी नहीं होता है. लकी कलर टील है. लकी नंबर इज 6. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी हाई है, आइडियाज फ्रेश है. आज रूटीन को थोड़ा सा रीमिक्स करो, हो सकता है बेस्ट आइडिया कॉफी के सेकेंड सिप के साथ आ जाए. लकी कलर इज मस्टर्ड. लकी नंबर इज 3. जेमिनी यानी मिथुन राशि, अनएक्सपेक्टेड इन्वाइट्स और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस इनकमिंग. ड्रामा को स्किप करो, लाइफ ऑलरेडी हैज इनफ प्लॉट ट्विस्ट. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर है 9. कैंसर यानी कर्क राशि, घर पर चिल करो यार, फ्यूचर प्लान्स बनाओ. हर चीज में रॉकेट लॉन्च करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सोफा पर बैठकर सेल्फ केयर करना ही बेस्ट होता है. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, शॉर्ट ट्रिप्स, न्यू फेसेस और क्रिएटिव वाइब्स. बस थोड़ा सा नॉइज से दूर होकर अपने थॉट्स को सुन लो. लकी कलर इज कॉपर. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, मनी और बिलोंगिंग्स पे नजर रखो. व्हाइल करियर कॉन्फिडेंस बिल्ड्स, बजट को चेक करो, बैंक बैलेंस को सरप्राइज पार्टी मत देना. ओके. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन. लकी नंबर इज 8. एंड दैट इज फर्स्ट 6 राशिज. बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और मुझे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: लोग उन्हें में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे, उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Hey, hello!
4: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
5: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
4: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
5: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
5: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
8: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा।
7: एंड अक्टूबर 18th, द वॉइस बिहाइंड बारिश एश किंग। Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: नवरात एकत स्पिरिट।
10: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
9: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
10: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
11: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
16: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
15: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-

0: 8671-1344।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्यार में चमको जैसे चुगनो।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट
2: And your stars have entered the group chat. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग्स का वो पार्ट जहाँ पे तुम्हारी राशियों के बारे में हम बात करते हैं.
3: मिर्ची राशि जोन.
2: यानी कि तुला राशि. मून यूरेनस एंड मार्स आर टर्निंग अप द एक्साइटमेंट इन पार्टनरशिप्स. इंपल्सिव प्लान्स, फन, इंपल्सिव टेक्स्ट. मे बी पहले ड्राफ्ट अच्छे से पढ़ लो, देन सेंड लेटर. लकी कलर इज ब्लू. लकी नंबर इज 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. यू मे फील लाइक स्पीकिंग योर माइंड टुडे. गो हेड बट कीप द स्टिंग आउट ऑफ योर वर्ड्स. ऑफिस कॉलीग्स जो है वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं है तुम्हारे साथ. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 4. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. फ्रेंड्स मे स्विच ऑफ द प्लान एंड ट्रैवल और चांस एनकाउंटर्स could surprise you. Keep an open mind and your phone charged. Lucky color is saffron. Lucky number is 5. Capricorn yani makar rashi. Steady wins today. Handle responsibilities one step at a time. Rome wasn't built in a day and neither is your to-do list. It's not

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
8: वो तो होगी ही और तामझाम भी होगी दुगना।
9: यस, ओनली एट इंडो अमेरिकन फेस्टिवल INC
10: 28th दशहरा फेस्टिवल ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर एट लेक पापायानी पार्क एडिसन न्यू जर्सी 1 PM टू 8 PM।
11: जॉइन अस फॉर मार्वेलस रामलीला, स्पेक्टेकुलर रावण दहन, कल्चरल प्रोग्राम्स, मीना बाजार एंड मोर।
12: फॉर डिटेल्स कॉल 7324448381 और विजिट dashera.com।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
18: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
19: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
18: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, hold on. नवरात्रि के लिए डांडिया ले लिया, आउटफिट सेट कर लिया, डेट्स भी पक्की कर ली है, लेकिन अपनी किस्मत पे थोड़ा सा क्लिक क्लिक आजमाया कि नहीं आजमाया, वो मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे आजमाना है। इमेजिन करो नवरात्रि की 9 nights और तुम्हारे पास हर रात को है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीतने का, कुछ चमचमाता हुआ सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। कैसे? लेट मी टेल यू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, और मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल सकती है गोल्ड की चेन। यस, यू हर्ड दैट राइट, मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। 9 नवरात्रि की नाइट्स है, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, हर रोज प्रेशियस गोल्ड चेन्स जीतने का चांस तुम्हें मिल रहा है। मतलब कि इस बार माता रानी की कृपा जो है तुम पर बनी हुई है, गोल्डन ब्लिंग ब्लिंग भी घर पर आ सकता है। यस, इसे जीतना इतना ही ज्यादा सिंपल है और पार्टिसिपेट करना उससे भी ज्यादा सिंपल है। पहला स्टेप ये है कि व्हाट्सएप करो अभी के अभी, लिखो नवरात्रि, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखो और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। और दूसरा काम ये कर सकते हो कि इंस्टाग्राम खोलो, मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। नवरात्रि टाइप करो, अपना पूरा नाम और फोन नंबर लिखकर मुझे भेज दो मिर्ची प्रिस पर, दैट इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और उसके बाद वेट करो मेरे कॉल का। एंड व्हाइल यू आर वेटिंग, और फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, उसकी शॉपिंग भी कर ही रहे हो, तो वीरानी ज्वेलर्स को विजिट करो ओक ट्री रोड पर, जहां पर स्पेशल अमेजिंग ऑफर्स चल रहे 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन पता करना है तो वीरानीज्वेलर्स.com इज द प्लेस जहां पर जाकर तुम विजिट कर सकते हो। और अभी मेरे जाने का टाइम हो गया, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Yeah.
1: Meaty Mitchy.
0: Brighten up your day or we will find a way.
1: On Meaty Mitchy.
2: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं.
3: श्रुति श्रुति
4: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरैक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम. 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए. और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है. 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया. और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा. वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहा है मेरा भी।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
1: मेरा पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर जा करनी।

0: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहां
0: ठीक है मैं निकलवा लूंगा और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहां पे भी जाना है।
0: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
0: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
6: I am not going to bed with you ever again.
5: But why? What did I do?
6: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
5: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
6: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
5: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
6: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
7: सोना खरीदने के सोच रहे से पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं। और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
11: पेड फॉर बाय desiblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
12: नो
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Hey, hello! नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
17: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
18: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
17: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
18: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
17: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
19: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Nine nights, one divine spirit.
11: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
10: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 PM.
11: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
10: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
15: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
14: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
15: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
16: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन।

0: करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com

0: Yeah.
1: Meaty Mitchie.
0: Brighten up your day, we will find a way.
1: On Meaty Mitchie. Aha.
2: खेलो मगर प्यार से.
3: श्रुति श्रुति
4: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी. आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए. बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ. तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी. हेलो सर, कैसे हैं आप?
5: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और
2: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को. जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
5: जावेद जाफरी.
2: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
5: धमाल.
2: क्या बात. धमाल में मानव का भाई कौन है?
5: मानव का भाई अरशद वारसी.
2: क्या बात. अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
5: मुन्ना भाई.
2: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
5: संजय दत्त.
2: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
5: खलनायक.
2: गाना याद किया था ना.
5: हाँ, वही पहले वही आता है.
2: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
5: माधुरी दीक्षित.
2: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
5: ये जवानी है दीवानी.
2: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
5: कल की.
2: ओके, पता है. कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
5: बैग का नाम बैगवती होता है. मूवी याद नहीं आ रही.
2: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले.
3: मिर्ची फिल्मची.
5: थैंक यू श्रुति.
2: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल कि मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.
6: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
10: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
11: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
15: मुझे नौलखा मंगा दे रे
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट वीरानीज्वेलर्स.com.
0: Yeah,
1: Meaty Mitchie.
0: Brighten up your day, we will find a way.
1: On Meaty Mitchie, aha.
2: खेलो मगर प्यार से.
3: श्रुति श्रुति
4: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ. तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल. तैयार है आप?
5: जी.
2: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है. ZNMD में पिंक फोन कौन चलाता है?
5: ऋतिक रोशन.
2: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
5: कभी खुशी कभी गम.
2: काफी म्यूजिकल हैं आप. कभी खुशी कभी गम में कह दिया, बस कह दिया कौन बोलता है?
5: अमिताभ जी.
2: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?

0: मोहब्बतें।
1: मोहब्बतें में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
0: ऐश्वर्या राय।
1: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
0: ए दिल है मुश्किल।
1: ए दिल है मुश्किल में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
0: रणबीर कपूर।
1: रणबीर कपूर किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
0: कौन से बने हैं?
1: पापा पगलू।
0: एनिमल।
1: एनिमल में अबरार कौन है?
0: कौन है? बॉबी देओल।
1: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
0: वाइफ स्वॉपिंग। अजनबी।
1: क्या बात। अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
0: करीना कपूर।
1: करीना कपूर की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
0: रावण।
1: हाँ जी। रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
0: शाहरुख खान।
1: शाहरुख खान कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
0: वीर जारा।
1: वीर जारा में उनकी डिफेंस लॉयर कौन है?
0: रानी मुखर्जी।
1: रानी मुखर्जी की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं? आपने भी गेम एकदम तारा रम पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
2: मिर्ची फिल्म जी।
1: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर DM करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। मुझे कहना

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति। मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो, ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती हैं। वेल, ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी, बट इन अ वाइल अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल एक हरा, कौन से काटू सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: पीछे हो गया
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर।
2: रंग बता।
3: एक लाल एक हरा।
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर। लेकिन सिचुएशन है।
2: आसपास कोई भी नहीं है।
3: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
3: ठीक है।
2: हरा काट के देख।
3: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
7: Sona kharidne ke soch rahe hai? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
12: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। सो ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती हैं, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
7: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Hello!
13: Navratri ka rang aur Oak Tree Road ki vibes.
14: Get ready for the biggest open air garba. Mayor John E. McCormick aur Oak Tree Road Indian businesses laaye hain a grand celebration.
15: 15 aur 16 October, sham 7 se 10 baje tak at Oak Tree Road between Middlesex and Kureta Avenue.
14: Jhoomiye Umesh Patel ke dhol par 15 tarikh ko aur Rex D'Souza ke suron par 16 ko.
15: And the best part, it's completely free.
14: Radio partner Mirchi.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: यादों पे चारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है, जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
9: मुझे नौ लख मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट virani jewelers.com।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9 सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्ति शालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्ति शालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इस पूरी फिल्म में जया बच्चन के जितने भी शॉट थे ना, उनको बस हाफ प्रोफाइल तक रखा गया था पुरानी जीन्स पे। हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है मूवी चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, जया बच्चन थी इसमें, एंड जया बच्चन वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म। तो उनकी जितने भी शॉट लिए गए ना, उनको सिर्फ हाफ तक रखा गया था, मतलब कहीं पे भी उनकी बेली को नहीं दिखाया गया है। तो आज इस फिल्म के बारे में ना ढेर सारी मिलकर के गप्पे करेंगे, इनके बहुत सारे गाने भी होंगे, ओनली विद मी श्रेया ऑन पुरानी जीन्स। तो गाने सुनकर के वापस आओ, फिर शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। नहीं यार, वार्तालाप बड़ा पुराना वर्ड है, आज की गप्पे ये बड़ा मिलेनियल वर्ड है। तो शुरू क्या करें, बस आज की बातें आप और मैं मिलके।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
3: अबे तू है कौन? तू ये बता
4: ना इसे। ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांड में, ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
8: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
9: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
7: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
6: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26+ DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल
12: 732-397-0057।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab, mirchi kha.
3: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने में भी और इस जमाने में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आइज से देखोगे तो इट्स वेरी हार्मफुल, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पता है इस फिल्म को रिलीज किया था, क्योंकि 1980 में सोलर एक्लिप्स हुआ था एंड गवर्नमेंट वांटेड कि हर कोई अपने घर में बैठे। अब उसके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन होता था दूरदर्शन, और इसीलिए इस फिल्म को सूर्य ग्रहण के दौरान रिलीज किया गया था ऑन दूरदर्शन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ मैं बात कर रही हूँ आज मूवी चुपके चुपके की। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी, जया बच्चन अमिताभ बच्चन भी थे इस फिल्म में, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1980 में, सो दैट जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो भाई लोग घर के बाहर ना निकले। तो उस जमाने की ऐसी कुछ सिंपल सिंपल यादें और बातें लेकर के इकट्ठा करके आती हूँ। यू कम राइट बैक, क्योंकि अगली बड़ी चटपटी सी बात है इसी फिल्म की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Oh no!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
13: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बच्चन साहब और जया बच्चन पीछे पड़ गई कि उनको इस फिल्म में रोल चाहिए है। ऋषिकेश दा उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे ऋषिकेश दा के पास। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड उस जमाने में ना इंडस्ट्री में सिर्फ दो दादा होते थे, एक एस डी बर्मन साहब और दूसरे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जिनके लिए ह्यूज हाई रिगार्ड्स होल्ड करते थे दोनों बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। सो व्हेन दे हर्ड कि ऋषिकेश दा एक फिल्म बना रहे हैं चुपके चुपके, वो दोनों उनके पास गए कि हमें तो रोल चाहिए। दादा ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई फिल्म बने और उसमें हम ना हो, जैसे कि अभिमान। वेल, तो दादा ने उनको एक बात समझाई, लेकिन दोनों इस बात पे अग्री ही नहीं किए। और फिर ना दोनों ने ये फिल्म कर भी ली, जबकि इन दोनों के बहुत ही छोटे छोटे रोल्स थे। क्या समझाया था मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: ए हेलो,
7: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
8: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
7: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
8: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
7: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
8: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
12: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दा ने कहा कि ये रोल तुम दोनों के लिए बहुत छोटे हैं, यू आर टू बिग स्टार्स फॉर दिस रोल, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। वेल, 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड। मूवी का नाम है चुपके चुपके। इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है बच्चन साहब ने एंड जया बच्चन जी ने। सो ऋषिकेश दा को ये दोनों अपने फादर मानते थे और प्यार से उनको दादा कहते थे। सो जब इन दोनों को पता चला कि ऋषिकेश दा अभिमान के बाद ये फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है चुपके चुपके, और इसमें इन दोनों को नहीं लिया है, वो दोनों पहुंच गए ऋषिकेश दा के घर और उनसे कहा कि दादा हम दोनों क्यों नहीं है इसमें। तो पता चला कि रोल बहुत छोटा है और वो न्यू फेसेस चाहते थे, जैसे कि धर्मेंद्र जी को चाहते थे। तो भाई बच्चन साहब ने कहा रोल चाहे जितना छोटा हो या फिर एक कैमियो ही क्यों ना हो, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। फिर क्या, ऋषिकेश दा ने कहा ठीक है भाई आ जाओ। सोचो, आई मीन ये कितनी खूबसूरत बात है कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन किसी को इतना मानते थे कि उनकी फिल्म में छोटा सा रोल मिल जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी फिल्म चुपके चुपके का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

धर्म पाजी की जिद के आगे ऋषिकेश मुखर्जी की बिल्कुल नहीं चली। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ। मूवी का नाम है चिपके चिपके, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। सो धर्मेंद्र जी को इस फिल्म में लीड हीरो का रोल मिला और ऋषिकेश मुखर्जी आशा पारेख को चाहते थे उनके ऑपोजिट एज इन एज द लीड हीरोइन। लेकिन फिर धर्म पाजी ने सारी कसरतें कर डाली कि भाई आशा पारेख को रिप्लेस करके शर्मिला टैगोर को लाया जाए। धर्म पाजी को लगता था कि शर्मिला टैगोर ऑलरेडी एक हिट हीरोइन थी, बड़ी सारी पिक्चर्स जो हिट थी वो कर चुकी थी, फिर चाहे वो अमर प्रेम हो, अनुपमा हो, एन इवनिंग इन पैरिस हो, सो मैनी ऑफ देम। तो फिर उन्होंने ना काफ़ी जद्दोजहद करके ऋषिकेश मुखर्जी को मना लिया। फाइनली ऋषिकेश दा ने भाई कहा चलो अपनी जिद पूरी करो, ले आओ शर्मिला को। एंड आशा पारेख जिनको वो अपना वर्ड दे चुके थे, आशा पारेख इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई और उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने ये भी छापा था कि आशा पारेख ने आइरोनिकली धर्मेंद्र जी को ना इस बात का दोषी नहीं ठहराया, वो नाराज़ रहीं हमेशा के लिए ऋषिकेश मुखर्जी से। पुरानी जींस पे इसी फिल्म के सारे गप्पे मारेंगे मैं और आप मिलकर के। सो कम बैक राइट हियर, मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे
2: क्या कमी है। इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
2: मेरा लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
3: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा
2: ठीक है,
3: और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: इनफिशियंट, वेरी कॉम्प्लेक्स,
11: क्लमजी और
12: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
8: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती
13: है, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
16: ओ नो,
17: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर,
1: अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आबू श्रेया के साथ एक ऐसी मूवी जो उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर चुकी थी एंड पीपल लव्ड बिकॉज ऋषिकेश दा की ना जितनी भी फिल्में होती थी उनके सिंपल प्लॉट होते थे और घरेलू जिंदगी से हमेशा रिलेट करती थी. सो इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्म पाजी, शर्मिला टैगोर एंड इसी फिल्म का एक बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनाती हूँ आपको. समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग. सो ये गाना किशोरदा और रफी साहब ने एक साथ गाया, सुनना. अब हुआ ये कि इस गाने का एक स्टैंजा तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ गा रहे थे, बट अगले स्टैंजा के लिए ना ये हुआ कि भाई आराम से गाएंगे इसको, और उस आराम से में ही रफी साहब को देश के बाहर जाना पड़ गया. अब क्या होता, क्योंकि गाना तो दोनों एक साथ गा रहे थे, फिर क्या किशोरदा मैदान में उतरे और जो अगला स्टैंजा है वो जब आप सुनोगे ना तो किशोरदा ने सोलो ही गा करके ख़त्म कर दिया, निपटा दिया. यही गाना कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स. दिस इज़ मी श्रेया.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
5: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
6: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: नवरात एक स्पिरिट,
9: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
8: रमो गरबा डेली 11-19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી।
9: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ, 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી। વિઝિટ gayatricenter.org ટુડે।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
12: ये

एक ही साल में इंडियन ऑडियंस ने इन दोनों के दो रूप देखे. 1975, द ईयर दैट एक्चुअली वाज मैग्निफिसेंट इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. एक तरफ इन दोनों की मूवी शोले रिलीज हुई और दूसरी तरफ इनकी फिल्म रिलीज हुई कॉमेडी वाली चुपके चुपके. शोले जिसमें एक्शन ही एक्शन था, दूसरी तरफ चुपके जिस मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन एंड धर्मपाल जी की. ये इन दोनों की पहली फिल्म थी चुपके चुपके, जिसने पूरी तरीके से कॉमेडी से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड इट इज सेट कि धर्मपाल जी एंड अमिताभ बच्चन को इतना मजा आता था, दो इन दोनों के सीन्स बहुत कम हैं एक साथ, बट दे हैड द टाइम ऑफ देयर लाइव्स व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म. वैसे ये बात तो ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म के लिए कही जाती है, सिर्फ उनके ही नहीं, यश चोपड़ा साहब की भी हर फिल्म के लिए कहा जाता था कि उनकी फिल्म के सेट्स नहीं होते थे, फैमिली पिकनिक हुआ करती थी. पुरानी जीन्स पे चुपके चुपके की ही बातें चलती रहेंगी विद मी श्रेया. सो बस कहीं भी मत जाना, कम राइट बैक.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ ಜೇ.

0: घोड़ा चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, गा
1: एक चतुर नार।

0: Priscilla.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
7: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
12: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
11: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
12: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
11: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
13: तेरा क्या
14: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
17: The whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
18: What?
19: My name is Anthony Gonsalves.
18: Gonsalves?
19: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute.
0: Right.

0: Gully number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: अच्छा सुनो, तुमको बच्चन साहब का घर जलसा, घर नहीं बंगलो जलसा अंदर से देखना है क्या? तो फिर चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे. हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और ये फिल्म है चुपके चुपके, ऋषिकेश दा ने बनाई है और इसमें जया जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, शर्मिला टैगोर हैं. मेन लीड में तो धर्मपा जी और शर्मिला जी थी और छोटे से रोल में थे अमिताभ बच्चन एंड ऑफ कोर्स जया बच्चन. ओके, सो अगर आपको उनका घर, उनका बंगलो देखना है ना, तो आपको इस फिल्म का ये गाना देखना पड़ेगा, चुपके चुपके चल रही पुरवैया. एक्चुअली इस गाने के जितने भी शॉट लिए गए हैं ना, ये इसी बंगलो के अंदर लिए गए हैं. तब ये बच्चन साहब का बंगलो नहीं था, इसका नाम जलसा नहीं था, ये था एनसी सिप्पी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी साहब का घर. तो ऋषिकेश मुखर्जी ने ना कुछ दिनों के लिए ये गाना शूट करने के लिए उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था. सो इफ़ यू रियली वांट टू सी कि उस टाइम पे जलसा कैसा लगता था, ये वाला गाना देख लेना. मुझे तो बड़ा मजा आया देख करके. एक बड़ा सा टेरिस दिखाया है, उसमें बड़ा सा झूला है, खूब सारा ओपन ग्राउंड है आसपास. सो या गो एंड वॉच दिस. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ. एनसी सिप्पी साहब ने ये बंगलो दिया कब, क्यों और कैसे बच्चन साहब को, अभी बताऊंगी ये कहानी. कम राइट बैक.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इस गाने की शूटिंग के दौरान ही मुझे लगता है कि बच्चन साहब ने सोच लिया था कि ये घर तो वो खरीद के रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आपको जलसा, यस, उनका बंगलो अंदर से देखना है तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ये वाला गाना देखना पड़ेगा। चुपके चुपके चल रही पुरवैया, ये जलसा के अंदर शूट हुआ है। अब पूरी कहानी बताती हूँ इस गाने की, इनफैक्ट जलसा की। सो होता ये है कि ये पूरा बंगलो जो है वो NCCP साहब का होता था, तब इसका नाम ना जलसा नहीं होता था। तो ये गाना जब शूट किया गया उसके बाद ना तभी सोच लिया था बच्चन साहब ने कि भाई वो ये बंगलो लेकर के रहेंगे। अब हुआ ये कि इसी दौरान NCCP साहब के बेटे की किडनैपिंग हो जाती है एंड तब से उनको लगता है कि भाई घर बहुत बड़ा है, बंगलो बहुत बड़ा है, ही कुडंट टेक केयर एंड घर में लोग बहुत कम है, वो हमेशा से ये घर छोड़ना चाहते थे। इसी टाइम के दौरान उन्होंने फिल्म बनाई सत्ते पे सत्ता जो कि ह्यूज हिट रही। हाँ, सो बच्चन साहब ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आपको ये घर बंगलो वैसे ही नहीं पसंद है और मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, सत्ते पे सत्ता हिट भी हो गई है, तो एक काम करिए आप मुझे बंगलो दे दीजिए और जो बाकी का पैसा बचेगा मेरी फीस का वो दे देना मुझे। NCCP साहब को ठीक भी लगा, उन्होंने ये बंगलो एज फीस सत्ते पे सत्ता के हेट होने के बाद बच्चन साहब को दे दी। यही बंगलो आज जलसा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर संडे बाहर आते हैं और अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ वेव करते हैं, ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन जी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, ऐसी बहुत सारी गप्पे होती है मेरे पास, तो बस वापस आओ।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirci, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है सर। ये दो हैं, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा, कौन सा काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: कैंची ले ली सर।
3: इमीडिएट तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है।
2: आसपास
3: है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
2: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ, बिल्कुल।
2: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: बताइए, हरा काट के देख।
3: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ। तो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पगला।
6: गोल्ड प्राइसेस आर राइज़िंग
7: बाय एट राज ज्वेल्स।
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकोमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
10: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
11: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
10: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
11: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first.

0: चॉइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
3: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दा का ना बिल्कुल अलग तरीका होता था अपने एक्टर्स को रिपोर्टिंग लेट के लिए पनिश करने का। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ आज बात हो रही है फिल्म चुपके चुपके की, जिसमें थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया जी एंड अमिताभ बच्चन। सो धर्मपा जी ना हमेशा लेट होते थे सेट पे, तो पता है क्लाइमैक्स अगर तुम इस फिल्म का देखोगे तो उसमें दिखाते हैं कि धर्मेंद्र जी एक वॉशरूम से निकल रहे हैं एंड ही इज एडजस्टिंग हिज पैंट्स, वो अपनी पैंट्स को ठीक कर रहे हैं। अब ये सीन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऋषिकेश दा क्रिएटिवली पनिश करना चाहते थे धर्मेंद्र जी को फॉर ऑलवेज कमिंग लेट ऑन द सेट। अब धर्मेंद्र जी जो हमेशा अपनी मैचो मिच के लिए, गुड लुकिंग फीचर्स के लिए नोन थे, ही वॉज पॉपुलर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि वो हमेशा अच्छे दिखे, सोफेस्टिकेटेड दिखे, वाइट शर्ट में दिखे, उनको भाई अपने डायरेक्टर की बात माननी पड़ी। ये उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि वो अपनी पैंट को ठीक ठाक करते हुए बाथरूम से निकल रहे, ये शूट लिया जाए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Nine Nights, One Divine Spirit.
7: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
6: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 PM.
7: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
6: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
11: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
12: Yes, only at Indo American Festival INC,
13: 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
10: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
14: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
3: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

उस टाइम पे ना हर डायरेक्टर का एक फोटे होता था, जैसे कि यश चोपड़ा साहब जो थे ना वो फॉरेन लोकेशंस दिखाते थे, जैसे गुरुदत्त साहब जनरली डार्कर साइड ऑफ लाइफ दिखाते थे, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनकी फिल्मों में तो हमेशा आम आदमी होता था और वो कोशिश करते थे कि क्लाइमैक्स तक आते आते

अपने ऑडियंस को ना कुछ लाइफ गिविंग लेसन दें। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। सो उस टाइम पे पता है क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंग्लिश का एडवेंट हो रहा था एंड इंग्लिश कॉमनर्स के पास भी पहुंच रही थी। बट इस फिल्म में जब धर्मपाल जी को दिखाया कि धर्मेंद्र बोटैनिकल प्रोफेसर हैं, उनकी साइंस एकदम अव्वल दर्जे की है लेकिन इंग्लिश टूटी फूटी है, और एंड में दिखाते हैं कि भाई चाहे लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो, अगर आपको नॉलेज है तो यू आर द बेस्ट। सो इसीलिए ना ये फिल्म बहुत ही प्यारी है, बहुत हल्के फुल्के जोक्स हैं, आप बहुत रिलेट करोगे इससे। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखो, और अगर देख लिए तो बार बार देखो। मूवी का नाम चुपके चुपके। पुरानी जीन्स पे ये किसका नाम है? मेरा यानी आपकी प्यारी श्रेया का नाम। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHREYA विद लव।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट इंटरनेशनली, अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
8: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
11: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
12: Moral of the story, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब

कुर्सी की बेटी बांध दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की शाम सीधा वीकेंड की उड़ान भरने वाली है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और मुझे फ्राइडे ना हमेशा एयरपोर्ट जैसा लगता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम अपनी फ्लाइट्स पकड़ते रहते हैं, ऑफिस की, मीटिंग्स की, डेडलाइंस की, ट्रैफिक की, और फिर फ्राइडे शाम आते ही लगता है जैसे अनाउंसमेंट आ गया हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फ्लाइट टू वीकेंड इज राउ रेडी फॉर बोर्डिंग। किसी ने ऑलरेडी डिनर के प्लान्स बना लिए, कोई रोड ट्रिप के लिए बैग्स पैक कर रहा है, तो कोई बस घर जाके पजामास पहनने का काउंट डाउन कर रहा है, और कुछ लोग का तो वीकेंड का पहला प्लान ही होता है कि बस सैटरडे का अलार्म नहीं लगाना है। और मुझे लगता है कि यार फ्राइडे की सबसे अच्छी बात तो यही है कि सिर्फ दो छुट्टियों का प्रॉमिस ही नहीं लाता, ये पूरे हफ्ते की मेहनत का ना रिवॉर्ड लेकर आता है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, स्माइल थोड़ी बड़ी करते हैं, बॉलीवुड का वॉल्यूम फुल ऑन बढ़ाते हैं और ऑफिशियली वीकेंड मोड ऑन करते हैं। वैसे आप भी बताइए दोस्तों, आपके वीकेंड के बोर्डिंग पास किस डेस्टिनेशन का है? लॉन्ग ड्राइव, फैमिली टाइम, दोस्तों के साथ मस्ती, या सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब मोड? DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस वीकेंड की फ्लाइट का पहला साउंड ट्रैक प्ले करते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि टेस्ट कैसे करते हैं ये?
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो,
1: कि
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो, आप दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप? क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा, तुझे जहाँ
2: मैं निकलवा लूंगा, और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई, किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
19: No, no, no, चुराने का जरूरत नहीं। मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
20: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
19: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
21: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
12: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
11: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
14: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
13: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
14: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
15: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नवरात्रि के लिए फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन सबको तो इनवाइट कर लिया, लेकिन उसी के साथ लेडी लक को भी इनविटेशन बनता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि मिर्ची और विरानी ज्वेलर्स आपकी लेडी लक को आजमाने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं विद मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि के 9 नाइट्स, और आपको मिलेंगे 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जिसमें लकी विनर्स जीतेंगे प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो बस किस्मत आजमाने का मौका आपके सामने, और आपको करना है रजिस्टर हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244 9033647244। टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे रजिस्टर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। टाइप कीजिए नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, और पाइए मौका टू विन गोल्ड चेन। और फेस्टिव सीजन की गोल्डन शॉपिंग के लिए विरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इजलिन पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशल ऑफर्स भी है, तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए, इनविटेशन तो सबको भेज दिया, तो अब एक नवरात्रि अपनी लेडी लक को भी आजमाइए। आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लक का हार, ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्टार्ट चुस्तियों में, क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे, टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
0: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
5: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
6: मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 36 पे आएगी। शाम शानदार, let's do not
1: donkey, have a funky time। दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूं आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka. Mirchi, burka.
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं हेलो?
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना बतानी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अगर तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
6: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
5: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
12: Ye Mrs. Chopra na keep showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती
15: रहती हैं, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
18: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
20: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
21: 2108069।
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
22: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
23: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
22: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
24: Sham Shanda, let's do Nautanki, have a funky time.
25: शाम शादा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ में ना अक्सर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है वही कभी कभार सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है, फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन। यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है, और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियाँ कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है लेकिन सवाल भी हजार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
26: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज, गिविंग यू द फाइनल मॉर्गेज अपडेट फॉर द वीक। Today, the US markets rise as oil prices fall. Many buyers spend weeks looking for the perfect home before talking to a mortgage professional. That's like shopping without knowing your budget. Getting pre-approved first does more than tell you how much you can borrow. It helps you understand that what monthly payment fits comfortably into your lifestyle. And remember, just because a lender approves you for a certain amount doesn't mean you should borrow the maximum. You still want room in your budget for savings, vacations, emergencies, and everyday life. So friends, buying your dream home, pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 7%. 20-year fixed mortgage rate 6.875%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Finally, if you are planning to buy in the next 6 to 12 months your new home, avoid making major financial changes. Don't finance a new car, open several credit cards, or switch jobs without first discussing it with your mortgage advisor. Even small changes can impact your loan approval. So friends, once again, buying a dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.

0: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा दिया। डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold Pros with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Nine Nights, One Divine Spirit.
8: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
7: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.

0: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
1: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: अरे कहना क्या चाहते हो,
2: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
1: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आर्ट, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
10: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
11: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
10: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
11: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: एक ऐसा फ्राइडे का प्लान जो कैलेंडर में कभी लिखा नहीं होता, बस शाम होते होते खुद ही बन जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऑफिस खत्म हुआ, कार स्टार्ट की और सडनली सवाल आता है कि सीधा घर जाए या कहीं और। फिर एक फोन कॉल आता है कि डिनर बाहर चले, दूसरा बोलता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, कोई कहता है कि बस ड्राइव पे चलते हैं, और कभी कभी ना वो वीकेंड वही अनप्लान्ड 2 घंटे पूरे वीकेंड का फेवरेट पार्ट बन जाता है। ना रिजर्वेशन, ना आइटिनरी, ना 15 पर्सनल व्हाट्सएप प्लानिंग कमेटी, बस खूबसूरत सा वेदर, फेवरेट लोग और गाड़ी में म्यूजिक। तो आज का मिर्ची एक्सपेरिमेंट है यार, अगर आपको भी एक स्पॉन्टेनियस फ्राइडे प्लान बनाना हो तो आप क्या चूज करोगे, डिनर, लॉन्ग ड्राइव, मूवी, डेजर्ट या सीधा घर? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर आंसर लॉन्ग ड्राइव है तो साउंड ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, तो चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज। 3.5 मिर्चीज के साथ अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड। इज इट
8: कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स फ्रॉम Line to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn, and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्ड अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं वन प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
12: Inefficient,
13: very complex,
14: clumsy hoy,
15: confusion hi confusion,
16: disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao, apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR, kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

दोस्तों फेस्टिव सीजन में ओक ट्री रोड का अपना ही अलग बैकग्राउंड स्कोर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और शॉपिंग की हसल, लाइट्स की चमक। बस इस वीकेंड उसमें बॉलीवुड का वॉल्यूम भी अप होने वाला है क्योंकि राज जूल्स लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड जैमिंग, मतलब शॉपिंग के बीच बॉलीवुड म्यूजिक, जैमिंग और फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स और कई सारे गिव अवेज। और गोल्ड की बात जब होती है राज ज्वेल्स पर और बॉबी जी से गोल्ड का हाल अगर हम ना पूछे तो कैसे हो सकता है। तो कुछ ही देर में बॉबी जी भी होंगे हमारे साथ, जानेंगे आज गोल्ड का मूड और रेट क्या है। लेकिन ना आप नोट डाउन कर लीजिए, बॉलीवुड जैमिंग इस सैटरडे अक्टूबर 10th शाम 3 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10 बजे तक पार्टी ऑन रहेगी एट 1376 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी, यानी राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट में। और तब तक जैमिंग का मूड यही से सेट करते हैं एक बॉलीवुड फेवरेट के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी हैं मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल है, एक हरा, कौन से काटू सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: पीछे हो गया।
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर।
2: रंग बता।
3: एक लाल, एक हरा।
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
3: कैंची ले ली सर।
2: रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दे दो यार।
3: लेकिन सिचुएशन है।
2: सोच रहा हूँ। आसपास कोई भी नहीं है।
3: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ, बिल्कुल।
2: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: हरा काट के देख। धीरे से।
3: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
11: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द क्राफ्टी हैंड्स .com और कॉल
12: 7327-0057। चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड।
13: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती
12: है, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244। दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
16: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
19: वो तो होगी ही और ताम झाम भी होगी दुगना।
20: Yes, only at Indo American Festival INC
21: 28th Dasera Festival on Saturday 10th October
20: at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey 1 p.m. to 8 p.m.
22: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
23: For details call 732-444-8381 or visit dasera.com.
24: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
25: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
24: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
26: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
27: 2108069।
28: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
29: अरे कहना क्या चाहते हो,
28: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
30: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
31: तेरा क्या होगा कालिया?
32: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
31: अब मिर्ची खा।
33: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ज्यादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखिए, देखते ही देखते फेस्टिव वीकेंड आ चुका है और गोल्ड भी वेंसडे के डिप के बाद बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यार, गोल्ड के बारे में, गोल्डन आर में एक गोल्ड एक्सपर्ट ही हमें सबसे अच्छी जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए पहले बुलाते हैं बॉबी जी को। नमस्ते बॉबी जी। और सबसे पहले तो आज गोल्ड रेट और उसकी रिकवरी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सैटरडे के लिए जो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें बताइए।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू। देखिए, पहले तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 4200 से आज भी नीचे, $4190 पर ट्राई औंस। हालांकि लास्ट वीक गोल्ड इससे नीचे ट्रेड कर चुका है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, धनतेरस, दिवाली, पुष्य नक्षत्र और डांडिया गरबा सब फेस्टिवल्स का टाइम आ गया है, तो इंतजार ना करें, इससे पहले गोल्ड ऊपर जाए। अगर सुरीले शब्दों में बोला जाए तो बॉलीवुड जैमिंग के लिए आप सब इन्वाइटेड हैं, सिद्धि जी इंक्लूडिंग आप, क्योंकि आप तो हमारी बहुत एक फेवरेट, हम रोज आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और हजारों लोग आपको सुनते हैं। बॉलीवुड जैमिंग जहां से शुरुआत करेंगे हम अपने सुरों की, और उनको साथ में ले जाएंगे भजन जैमिंग में। थोड़ा सा सरप्राइज बाकी है सिद्धि जी, कल शाम को भजन जैमिंग से कैसे इवनिंग खत्म होगी उसके लिए लाइव आपको विटनेस बनना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, साक्षात जीना बहुत जरूरी है वो मोमेंट, क्योंकि ओपी रोड पर ये पहली बार हो रहा है कि बॉलीवुड एंड भजन जैमिंग टुगेदर एट राजोस पार्किंग लॉट सैटरडे अक्टूबर 10th बिटवीन द आवर्स ऑफ 3 to 10 PM। सिद्धि, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे गानों की एक लिस्ट बना के आ जाइए, क्योंकि कोई स्टेज पे गाएगा तो इस बार हम सब अपने साथ गा के ओपी रोड पे भजन जैमिंग करेंगे राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट में।
0: क्या बात है,
1: बॉलीवुड एंड भजन जैमिंग एट राज ज्वेल्स ऑन अक्टूबर 10th एट 3 to 10 PM।
0: तो देखिए दोस्तों, वीकेंड का प्लान बॉबी जी ने हम सबके लिए ऑलरेडी बना दिया है। सुरों के जो हम सुरों की पहचान हम सबको तो है ही, उसके साथ संगीत एंड भजन जब एक साथ जुड़ जाता है ना, दैट नाइट इज गोइंग टू बी मेमोरेबल। तो कभी अगर आपने भजन क्लबिंग एक्सपीरियंस नहीं किया तो पहली बार ओक ट्री रोड पर बॉलीवुड जैमिंग के साथ साथ भजन जैमिंग भी होगा। तो कल दोपहर को 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एंटायर इवनिंग इज लॉक्ड। तो पहुंच जाइए राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट पर ऑन ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी, क्योंकि हम तो अपनी लिस्ट लेकर पहुंचने ही वाले। लिस्ट का ये अगला गाना आपके लिए यहीं पर बचेगा।
1: सिद्धि जी, एक चीज और मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा दोस्तों को, ये एक इवेंट सबके लिए है, इसके अंदर कोई परचेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एंट्री फी नहीं है। आपको आके कहीं लिटिल इंडिया ऑफ रोड पर आपका जहां दिल करे आप शॉप कीजिए। ये राज ज्वेल्स का एक ट्रिब्यूट है अपनी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए, ताकि हम एक खूबसूरत सी शाम साथ में बिता सकें। तो नो परचेज इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो एंट्री फी। आप अपने फेवरेट सिंगर्स के साथ आपके फेवरेट गानों पे अपने साथ अपने दिल की जैमिंग कीजिए। इट इज एन एब्सोल्यूट इवेंट फॉर द कम्युनिटी एट नो कॉस्ट, सो एवरीवन इज इनवाइटेड।
0: क्या बात है बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड की चमक से सीधा बॉलीवुड के सुरों तक कल की शाम ऑलरेडी राज ज्वेल्स ने आपके लिए बुक कर दी है। तो पहुंच जाइए राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट पर 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। देयर इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल म्यूजिक, बॉलीवुड जैमिंग, भजन जैमिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी और मैं भी आपको वहीं पर मिलूंगी।
1: सरप्राइजेज ऑल्सो।
0: क्या बात है। एंड एज बॉबी जी ने भी बताया है और तन्वी जी ने भी हमें बताया था कि देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ गिव अवेज, डू नॉट मिस ऑन दिस वन एंटरटेनिंग इवनिंग। कल के प्लान्स ऑलरेडी अब हमने बना लिए हैं और अभी का गाना भी ऑलरेडी आपके लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। तो सुनते हैं यहाँ पर ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
4: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
3: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं।

0: पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट वीरानीज्वेलर्स.com
2: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
5: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
6: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
7: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स
8: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन
7: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू
8: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को
7: एंड द बेस्ट पार्ट इट्स कम्प्लीटली फ्री
8: रेडियो पार्टनर मिर्ची
9: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने
0: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
10: अरे कहना क्या चाहते हो
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट wiraniejewelers.com
11: तेरा क्या होगा कालिया
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
11: अब मिर्ची खा
12: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

एक दो तीन, तो बस दिन गिन गिन के रह गए हैं नवरात्रि के। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ दिन मत गिनो, गोल्ड जीतने के चांसेस भी गिनो। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और नवरात्रि की एक्साइटमेंट ऑलरेडी हवाओं में है। क्योंकि यार, आउटफिट से लेकर, प्लान से लेकर, फेस्टिव शॉपिंग, सब कुछ शुरू हो चुका है। और इसीलिए जब काउंटडाउन इतना स्पेशल है ना, तो सेलिब्रेशन भी ना थोड़ा और गोल्डन होना ही चाहिए। तो इसीलिए वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि की 9 नाइट्स और 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, जहां लकी विनर्स के पास एक मौका है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन। तो अब एक दो तीन करके दिन गिनने के साथ अपना नाम भी गेम में गिनवा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आपको व्हाट्सएप करना है हमारे मिर्ची के नंबर पर, 9033647244। टाइप करना है नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchi सिद्धि, SIDDHI। बस आपको टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर्ड। और दोस्तों, फेस्टिव सीजन की चमक वीरानी ज्वेलर्स पर फुल ऑन धमाके के साथ चालू है, विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो यार, काउंटडाउन मेरे फेवरेट स्टाइल में, एक दो तीन नवरात्रि के दिन गिन और 9 रातें 9 गोल्डन चांसेस टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय रानी ज्वेलर्स। और जब ओपनिंग यार इतनी एक दो दिन से शुरू हुई है, तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी माधुरी स्टाइल बनता है। तो वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस।

0: पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती
3: है, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट wiraniejewelers.com।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
12: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है, जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना, तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोक झोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये इस तरह।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
1: मेरा क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दे,
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
6: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
11: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
12: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
13: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
18: नो
19: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
20: वो तो होगी ही और तामझाम भी होगी दुगना।
21: Yes, only at Indo American Festival INC
22: 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 p.m. to 8 p.m.
18: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
23: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
24: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
25: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो,
25: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
26: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
27: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
28: एक ही होता है।
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजैन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है, और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन इंस्टा कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
11: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
12: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org.
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
16: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
19: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
9: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
8: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
0: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
5: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
23: मिर्ची फ्रेश माल।
24: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है. फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: नवरात एकत स्पिरिट
5: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
4: रमो गरबा डेली 11-19 October सांची 7 o'clock थी.
5: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी प्राइस

0: का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
6: ए हेलो,
7: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
8: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
9: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
10: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
11: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
12: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
17: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.